0: और इस शो के होस्ट आरजे एंकर कोमल आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारा आज की नारी ये सेगमेंट है, और हमारे ये आज की नारी सेगमेंट में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं साइमा किरमाणी मैम। तो साइमा मैम के बारे में बोलना चाहूंगी। तो सबसे पहले साइमा मैम, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो और थैंक यू सो मच आज आप यहाँ पर अपना कीमती समय निकलकर यहाँ पर आए।
1: थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: यस, सो साइमा मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आज हम देख रहे कि सभी फील्ड में हर एक वुमेन ने अपना खुद की पहचान बनाई है, वो अपने खुद के बलबूते पे खड़ी है, कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग वो कर रही है। और साइमा मैम के बारे में मैं ऐसे ही कुछ आपको बताने वाली हूँ। साइमा मैम एक बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है। इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ साथ मैजिकल मॉम्स के वो फाउंडर एंड डायरेक्टर है। मतलब एक वुमेन्स ने वुमेन्स के लिए काम करना चाहा तो वो क्या कर सकती है, आज ये हमें पता चलेगा यहाँ पे ये इंटरव्यू में। सो इसके साथ साथ वो एक एंकर भी है, बहुत बड़े बड़े शोज वो होस्ट भी करते हैं, खुद इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम लोग ये सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का भी हम कुछ ऐसे कि कभी कभी हमें कभी जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। तो यही बात को मद्देनजर रखते हुए मैम बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है। सो स्पेशली फॉर गर्ल्स और वुमेन्स, उनके लिए मैम का बहुत सारा काम रह चुका है। सो ये आज का जो इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर दो एंकर साथ में आते हैं तो क्या होगा, क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट मैम, सबसे पहले ये बताओ कि कैसे हो आप?
1: Absolutely fine. और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी। और यू नो यू आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड गर्ल एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिलके। और सी जब हम सेम फील्ड में होते हैं तो बहुत खुशी होती है अंदर से देखकर। सो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए।
0: ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि ये एक ऐसे फील्ड है कि बहुत बार पेरेंट्स जो होते हैं हमारे, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हमारी लड़की ये फील्ड में क्यों जाएगी। अगर हमारी लड़की आगे जाएगी तो वो कुछ साइंटिस्ट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, टीचर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। लेकिन ये फील्ड आपने कैसे चूज किया? मतलब इट्स रिलेटेड टू मीडिया वर्ल्ड। ओके, सो ये कैसे आपने चूज किया?
1: अभी आपने बोला कि पेरेंट्स हमारे क्या चाहते, तो मेरे फादर भी यही चाहते थे कि मैं, बिकॉज माय फादर वाज अ टीचर एंड वो चाहते थे कि मैं भी एक टीचर बनूं। आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन लिटरेचर एंड देन मैंने PhD स्टार्ट किया। बट आफ्टर थ्री फोर मंथ्स आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये टीचिंग लाइन मेरे लिए आई गेस नहीं बनी है। सो आई क्विट एंड आई डिड माई MBA। MBA करने के बाद में मुझे मैंने जॉब स्टार्ट किया एंड व्हेन आई वाज वर्किंग तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इवेंट वाला फील्ड जो है वो शायद मेरा पैशन है।
0: वाओ,
1: सो स्लोली आई स्टार्टेड एंड आई गॉट मैरिड एंड आई शिफ्टेड टू मुंबई। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से फिर मैं इधर आई। हस्बैंड वाज लाइक के जॉब नहीं करना है, बिकॉज लास्ट 15 ईयर्स से मैं जॉब कर रही थी। तो हस्बैंड ने बोला नहीं, अभी जॉब नहीं करना है, अभी आराम करो घर पर। सो आई क्विट माय वर्क। चलो ठीक है, शादी के बाद हम वी वुमेन बहुत सारे सेक्रीफाइस हमें करने होते हैं। सो आई डिड, मैंने भी कर दिया। बट घर में रह के रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मतलब घर में रह के अपनी क्वालिफिकेशन, अपना टैलेंट, वो सब वेस्ट हो रहा है मेरा घर में।
0: एग्जैक्टली।
1: और उसी दौरान मैंने आसपास की बहुत सारी लेडीज को देखा जो बहुत टैलेंटेड है, जिनके पास वो ड्रीम है, कैपेबिलिटी है
0: कुछ करने का
1: एंड वो नहीं कर पा रहे हैं मेरी तरह, या कुछ और कुछ और भी रीजंस होते हैं उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनका करियर ओरिएंटेड नहीं है बट वो लाइफ में एंजॉय करना चाहती है, स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा बाहर आना चाहती है। बिकॉज हमारी लाइफ एक सर्कल में हो जाती है, सुबह मॉर्निंग हस्बैंड का टिफिन, बच्चों का टिफिन, ये घर के काम, ये वो, बस उसी में हम रहते हैं। तो वो सारा मैंने देखा एंड मैंने अपने हस्बैंड से बात किया कि ऐसे मैं फ्री तो नहीं रह सकती हूँ, सो मैं कुछ करना चाह रही हूँ, कुछ तो करूंगी। आई स्टार्टेड एग्जीबिशंस, तो उसमें बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ मैंने ज्वाइन कराया कि हम लोग सब मिलके एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, हम लोग एक सपोर्ट करेंगे, साथ में काम करेंगे, तो सभी मिलके ग्रो करेंगे। आई स्टार्टेड एग्जीबिशन, बहुत सारी फीमेल्स को अपने साथ में, धीरे धीरे कारवा बनता चला गया, जोड़ते चले गए। देन आई गॉट प्रेग्नेंट. सो प्रेगनेंसी में एग्जीबिशंस वगैरह करना पॉसिबल नहीं था एंड उसी के दौरान मुझे लगा कि इन फीमेल्स को मैं एक प्लेटफॉर्म कैसे दूं जिसमें ये इंजॉय भी कर सके, अपना ग्रोथ भी कर पाए और यू नो लाइफ में आगे भी बढ़ पाए. देन आई स्टार्टेड मैजिकल मॉम्स. मैजिकल मॉम्स इज लाइक माई बेबी, मेरा ड्रीम
0: है.
1: फर्स्ट बेबी एक्चुअली वो मेरा ड्रीम है. एंड मैजिकल मॉम्स में हम सब करते हैं, आई मीन स्पेसिफिक ऐसा नहीं एक ही चीज के लिए. आई मीन हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, या हमें जैसे भी एक दूसरे की जरूरत है वी आर देयर फॉर ईच अदर. एंड सेकेंड थिंग उसमें जो पार्टीज भी करते हैं हम लोग कि स्ट्रेस उस लाइफ से थोड़ा सा निकलो, मी टाइम निकालो थोड़ा और वहां अच्छे से 3-4 आवर्स सिर्फ अपने लिए जियो. उसके बाद में हम लोग सोशल वर्क करते हैं, सोशल एक्टिविटीज लाइक बहुत सारी फीमेल्स है जो अवेयर नहीं है, हेल्थ से अवेयर नहीं है, हाइजीन से अवेयर नहीं है. बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको करियर से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है, उनको हम वो सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं कि चलो आप ब्यूटी यू नो ब्यूटिशियन वाली लाइन में जा सकते हो, चलो हम आपको वो सब अरेंज करा के देंगे, अपॉर्चुनिटीज देते हैं उनको यू नो फैशन वाली लाइन में जाना है उसमें जाएंगे. उसके अलावा मैजिकल मॉम से हम लोग यू नो वी फेलिसिटेट यू नो दिस जो इंस्पिरेशनल वुमेन है जो लाइफ में बहुत कुछ कर रही है, हमारे लिए हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, उनके लिए हम अवार्ड फंक्शन रखते हैं और उनको वहां बुलाकर फेलिसिटेट करते हैं. बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो यू नो सर्वाइवर है उसके बाद में भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है.
0: एग्जैक्टली
1: यू नो एसिड सर्वाइवर्स है, कैंसर सर्वाइवर्स है, उनको देख कैसे लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, दे आर द रियल फाइटर्स, वो लाइफ में सीरियसली कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए हम अवार्ड फंक्शन करते हैं. ऐसे ही धीरे धीरे धीरे मैजिकल मॉम स्टार्ट किया, कुछ फीमेल्स का ग्रुप बनाया कि चलो हम कुछ करते हैं. फिर वो कॉन्सेप्ट सबको बहुत पसंद है. व्हेन आई स्टार्टेड बहुत हार्डली ग्रुप थे, बहुत हार्डली इस तरह की कम्युनिटी ग्रुप थे और अब तो काफी सारे हो गए हैं मेरे यू नो मैजिकल मॉम्स के बाद में. मैंने रिसेंटली देखा काफी छोटे छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए एंड इट्स गुड, हम सभी के लिए वो बहुत अच्छा है. और उसके बाद में जैसे मैजिकल मॉम्स आगे चलता गया एंड टचवुड आज बहुत ग्रोथ कर चुका है,
0: बहुत ज्यादा
1: एवरीबॉडी नोज अबाउट मैजिकल मॉम्स कि हाँ हम मैजिकल मॉम्स वाली जो फीमेल्स हैं वुमेन हैं वो मतलब कुछ कर रही है लाइफ में.
0: यस यस एब्सोल्युटली, क्योंकि ना वो सबसे पहले तो वो नाम ही बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है. यू नो वो फील होता है जब आप ये नाम सुनते हो कि मैजिकल मॉम्स, एक हर एक मॉम के अंदर, हर एक माँ के अंदर एक मैजिक है और वो नाम ही इतना प्यारा है मैजिकल मॉम्स. सो बहुत अच्छा लगा ये नाम ही सुन के. शायद मे बी आप भी वो फील्ड में वो टाइम पे उसी इसमें से गुजर रहे थे, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये अच्छा खासा नाम आपको.
1: यस ऑफकोर्स, जब आप वो चीज फेस करते हो उस चीज को अच्छे से समझ पाते हो.
0: Exactly.
1: वो अगर मैं कोई पेन में हूं तो मैं आपका पेन वही सेम पेन समझ सकती हूं. मैं खुश हूं तो वो सेम आप खुशी में है तो मैं वो समझ पाऊंगी यार आई एम हैप्पी, ये इसीलिए इतना खुश है. वो मैंने समझा कि हाँ. और वो फीमेल्स यू नो वुमेन मैजिकल मॉम्स से जुड़ने के बाद में बहुत चेंज हो गए, यू नो खुशी मिली उनको, लाइक न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, न्यू प्लेटफॉर्म मिलता है अपने एक्सप्लोर करने के लिए, अपने यू नो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए
0: आइडियाज
1: शेयर होते हैं और बिजनेस को ग्रो करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है. और इवन जो एक्सपीरियंस मॉम्स है, कोई एज ग्रुप नहीं है इसमें कि सिर्फ यंगस्टर्स ही यहाँ रहेंगे, यू नो यंग भी हैं और एक एकदम यू नो एजड भी है. वो अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं लाइफ के, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, तो वो एक अच्छा कम्युनिटी में मजा आता है.
0: एग्जैक्टली. और ना जैसे कि आपने वर्ड यूज किया कि मी टाइम, हम लोग बहुत सारे वुमेन्स ऐसे, बहुत सारे औरतें ऐसे होते हैं कि ना कि फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, उनका करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं. और जो एक स्पेशल ये रहता है ना कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरे लिए खुद के लिए भी जीना है कि मेरी क्या पहचान है. और मुझे लगता है कि मैजिकल मॉम यही काम कर रहा है, एक खुद की अलग पहचान बना रहा है, अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दे रहा है सभी वुमेन्स को. सो ये तो हुआ कि मैजिकल मॉम की शुरुआत हुई. लेकिन कोई भी स्टार्टअप जब हम करते हैं तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आते हैं. कोई भी काम हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे आजू बाजू में ही ऐसे लोग होते हैं कि जो एक्सेप्ट नहीं करते इजीली. सो आपने जब ये शुरुआत किया मैजिकल मॉम्स की, जब ये स्टार्ट हुआ, तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया और फिर कैसे आ गया है?
1: आते हैं बहुत सारे डिफिकल्टीज, हर फील्ड में आते हैं. सो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं यू नो फीमेल्स का अलग से कुछ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. मीन्स उसमें हम पार्टीज भी करते थे, तो पार्टीज करते थे फीमेल्स की पार्टीज हो रही है तो कुछ लोग मतलब सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगता था क्यों इस तरह की पार्टीज कर रहे हैं. बट जब लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये मैजिकल मॉम्स क्या है और हमने क्यों बनाया, जस्ट सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं बनाया, ये लोगों को यू नो पीस भी दे रहा है, एक सुकून दे रहा है जिस स्ट्रेस में वो है या डिप्रेशन में. कितनी सारी मैजिकल मॉम्स में लेडीज स्टार्टिंग में ऐसे जुड़े जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन फेस कर रहे थे. जो आपने अभी बोला कि हम फैमिली में बिजी हो जाते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक. सी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक यू नो एक फैमिली है, एक फीमेल है, उसका बेबी है एक छोटा, एंड अगेन शी इज प्रेग्नेंट, वो वर्किंग भी है साथ में. तो वो एक इमेजिन कीजिए कि मतलब उसको देख के लगता है कि प्रेशर. नहीं, एक औरत से ज्यादा किसी में स्ट्रेंथ है ही नहीं. आई मीन मॉर्निंग उठ को बच्चे का टिफिन है, हस्बैंड का टिफिन है, इन लॉज का सब तैयारी करके जाना है, फिर ऑफिस जाना है, और काम पे से आने के बाद फिर काम पे आना है, अगेन डिनर तैयार करना है, और वो कल का स्ट्रेस, तो उसमें उनको टाइम नहीं मिलता है. उसमें से वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि क्या करें. तो 2-3 आवर्स महीने 2 महीने में हम उनको देते हैं, आज हमारे साथ स्पेंड करो, हम यू नो अच्छा यू नो हंसते हैं, खेलते हैं, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको बाहर निकालते हैं.
0: एंड एग्जैक्टली वी वॉन्ट एग्जैक्टली एक्चुअली ना यही हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं हमारे लाइफ में. और मुझे लगता है मैजिकल मॉम एक रीजन हो सकता है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने का, मुस्कुराहट लाने के लिए.
1: मेरा एम भी है, यू नो मुझे अच्छा लगता है, यू नो आई लव वेन मेरी वजह से लोगों को मुस्कुराहट मिलती है, लोग खुश होते हैं. आई एम ब्लेस्ड कि हाँ मैं बहुत सारे लोगों को खुशियां दे पा रही हूँ.
0: एग्जैक्टली. और ऐसे होता है ना कि जब हमारे घर की औरत ही खुश है तो डेफिनेटली उसका पूरा घर हैप्पी रहेगा,
1: एटमोस्फेयर ही चेंज हो जाता है.
0: यस, चेंज हो जाता है. सो मैम, मैजिकल मॉम्स की शुरुआत हुई तब मैजिकल मॉम्स के अंडर आपने बहुत सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए. हर एक इवेंट में हर एक वुमन रहे, चाहे लड़की हो चाहे वो औरत हो, उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म बनाया. तो मैजिकल मॉम्स के अंडर कौन से टाइप के इवेंट्स आपने किए या फिर आप अभी भी कर रहे हो?
1: अभी भी कर रहे हैं. मैजिकल मॉम्स में हम यू नो किड्स के लिए भी करते हैं, यू नो मॉम एंड मी, यानी अपने बच्चे के साथ आपको प्लेटफॉर्म दिया हमने, आपको वहां परफॉर्म करना है. आई मीन कुछ किड्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो वो मदर के सपोर्ट से आ जाते हैं स्टेज पे. कुछ मदर्स इतनी कॉन्फिडेंट नहीं, उनको ख्वाहिश है स्टेज पे प्लेटफॉर्म मिले और हम वॉक करें या ऐसा परफॉर्म करें, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो किड्स के साथ में आ जाती हैं, तो वो एक डियो बन जाता है, उनको मजा आता है. फिर उसके बाद में हम लोग किड्स के लिए, स्पेशली किड्स के लिए, बहुत सारी मदर्स का कैसे रहता है, एक ड्रीम रहता है मेरे बच्चे जो मैं नहीं कर पाई हूँ मेरे बच्चे
0: करे. हाँ,
1: तो उनकी खुशी खुद को परफॉर्म ना करके बच्चों में होती है. तो हम किड्स के लिए यू नो इवेंट्स करते हैं ताकि वो मदर्स अपनी यू नो खुशी ढूंढ पाए उसमें. इसके अलावा सशक्त नारी अवार्ड, जो मेरा सबसे यू नो फेवरेट इवेंट है मैजिकल मॉम्स का, एंड उसमें बिकॉज उसके नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा, सशक्त नारी, एंड वी वुमेन आर स्ट्रांग, वी ऑल वुमेन आर स्ट्रांग. कहीं ना कहीं हर औरत में अंदर की एक अपनी एक स्ट्रेंथ है, सबकी अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है. तो हम ये नहीं कह सकते जो वर्किंग है वही ज्यादा यू नो स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है. जो घर में हाउस वाइफ भी है उनका पार्ट अलग है, हमारा पार्ट अलग है, हमारे सेक्रीफाइसेस अलग है, उनके सेक्रीफाइसेस अलग है. तो सशक्त नारी अवार्ड में हम उन फीमेल्स को फेलिसिटेट करते हैं, अवार्ड देते हैं, जो वाकई में हम यू नो एक हम सबके लिए एग्जाम्पल है, सेट कर रही है कि यस औरत में एक यू नो स्ट्रेंथ है, वो
0: आइडियल
1: आइडियल है हमारे लिए, हम सबके लिए एक यू नो इंस्पिरेशन है. उनको हम फेलिसिटेट करते हैं. वो मेरा यू नो सबसे फेवरेट प्रोग्राम है इसका,
0: एकदम दिल के करीब
1: और अच्छा लगता है. आई मीन समटाइम्स आई क्राई, मुझे देख के रोना भी आता
0: है. आई नो, मैंने एक इवेंट में देखा था,
1: देयर वाज अ यू नो एसिड सर्वाइवर, हस्बैंड ने पूरा एसिड डाल के यू नो पूरा बर्न कर दिया, बच्चे भी हैं दो, स्टिल मतलब शी इज फाइटिंग, और वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना पढ़ाना, और वो शी इज वर्किंग, उसी हाल में वो जॉब कर रहे हैं, देखो काम कर रहे हैं और अपने बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं. एक आपने देखा होगा मेरे शो में, एक ये थे म्युनिसिपैलिटी के वो वर्कर थी,
0: वर्कर
1: और सरप्राइजिंगली कि उनका एक बच्चा सीए है, एक डॉक्टर है, एक यूएस में, एक कनाडा में, मतलब क्या उन्होंने कितना हार्डवर्क किया और किस ड्रीम के साथ अपने बच्चों को पढ़ा किया.
0: एग्जैक्टली.
1: तो वो है हकदार है इस तरह के अवार्ड्स के कि हाँ उनको दिया जाए. हमारे लिए आइडियल है कि बहुत सारी लेडीज के लिए आइडियल है कि हम कुछ कभी ऐसा होता है सिंगल मदर्स होते हैं तो मॉरल डाउन हो जाता है कि हम क्या करेंगे, हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे. बट हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है कि हमें यू नो लाइफ इज अनसर्टेन, हमारी हर सिचुएशन ही अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है, नेक्स्ट मिनट क्या होने वाला पता नहीं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना है. तो उस फंक्शन में हम उसी तरह के लेडीज को इनवाइट करते हैं, बिजनेस वुमेन्स को इनवाइट करते हैं जो घर भी संभाल रही है और बिजनेस भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, और हमारी यू नो फैशन इंडस्ट्री में, यानी घर में एकदम हाउस वाइफ है और घर में रहती है, बच्चा संभाल रही है, घर संभाल रही है, जो हमारी यू नो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है. हर एक औरत की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली, वो हमें इंटरनल खुशी देती है कि हाँ हमें वो तो सबसे करना ही है, लेकिन उसके बाद में हमारे खुद के भी कुछ पैशन होते हैं वो. तो बहुत सारी ऐसी है कि घर भी संभाल रही है और फैशन इंडस्ट्री में आप उन्हें देखें एक से क्लास मॉडल्स हैं, तो उनको भी हम बुलाते हैं. So it's all about this.
0: Yeah, exactly. तो basically, ma'am, हम लोग बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार मुझे मेरा काम कोई तो देख रहा है या फिर वो मेरा वाहवाह कर रहा है और वो मुझे एज अ अवार्ड मुझे वो ब्लेसिंग मिल रहा है. तो ये अवार्ड ये एक ब्लेसिंग है और मुझे लगता है ये ब्लेसिंग के साथ आगे काम करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और यू नो हम और ज्यादा इंटरेस्ट लेके वो काम करना स्टार्ट करते हैं. सो आप वही काम बहुत अच्छे से कर रहे हो क्योंकि ऐसे बहुत सारे वुमेन ने जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसे आगे नहीं आता है कि चलो मैंने ये फेस किया है लेकिन कोई आगे नहीं आएगा, काम नहीं करेगा. लेकिन आपने खुद के लिए प्लेटफॉर्म तो खड़ा किया ही है लेकिन आपके साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया. सो इट्स बहुत बहुत बड़ी बात है ये. तो लिसनर्स हमारे आज के ये आज की नारी ये इंटरव्यू में द मल्टी टास्किंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. साइमा मैम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके मैजिकल मॉम्स के बारे में तो हमने बहुत सुना लेकिन शी इज ऑल्सो एन एंकर. वो बहुत अच्छी एंकर है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है. उनके बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से एक बार मैं आपकी दोस्त और इस शो के होस्ट आर्जो एंकर कोमल आप सभी का फिर से

0: बार स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और हमारे आज के सेगमेंट में आज की नारी, ये हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइमा मैम। सो साइमा मैम के बारे में हमने अभी सुना कि मैजिकल मॉम की शुरुआत कैसे हुई और मैजिकल मॉम कैसे काम कर रहा है। सो मैम, मैजिकल मॉम्स के अंडर आप बहुत सारे इवेंट्स भी करते हो, तो आप यहाँ पे बिजी हो ही गए थे, लेकिन ये एंकरिंग का कब से है आपके मन में? क्योंकि मैंने जैसे कि आपने बोला कि आपने लिटरेचर वगैरह किया है और फैमिली वॉन्ट्स कि आप टीचर बने, लेकिन फिर ये एंकर, ये टोटली डिफरेंट फील्ड। सो ये इसकी हॉबी या फिर कैसे हुआ ये सब?
1: सी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो मैं इवेंट्स में तभी से हूँ। मुझे वो पसंद था, ये सब करना, अपनी फेयरवेल होती थी, अपने इवेंट्स होते थे, उसमें बैकस्टेज सब करना, बैकस्टेज के साथ फिर मुझे फ्रंट स्टेज
0: मैनेजमेंट
1: करना, फ्रंट स्टेज मजा आने लगा कि नहीं अच्छा है। फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा वहीं मैं करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने, एज आई टोल्ड यू, कि मैंने अपना MBA कम्प्लीट किया और जॉब किया। जॉब में आई वॉज इन HR, तो HR में भी हमें इवेंट्स आते हैं। HR में हमें ऑफिशियल वर्क के साथ इवेंट्स भी कवर करना होता है। वो इवेंट्स में भी मैं पार्टिसिपेट कर रही थी, एंड आई यूज टू दिस होस्टिंग एंड ऑल मैं कर लेती थी वहां पर। तो वो एक पैशन था, एक आपको पता ही नहीं होता आपका टैलेंट किधर है,
0: क्या
1: टैलेंट है आपके अंदर। घर से वही था प्रेशर, था पापा टीचर है, आपको भी टीचर बनना है, टीचर बनना है। तो बट नहीं, इतना सोचो, मतलब PhD से वापस आना, इट मीन्स लाइक कि नहीं, मेरा वो पैशन नहीं है, मेरा पैशन कुछ और है। और हाँ ठीक है, मैं जॉब कर रही थी, आई वर्क विद मारुति एंड दिस HCL, सो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। बट एक सही मायने में मेरा जो ड्रीम है वो इवेंट्स ही है, एंड उससे भी बड़ा ये मेरा एक ड्रीम है सोशल वर्क, जो मैं बहुत व्हेन आई वाज वेरी यंग, तब से मैं कर रही हूँ। मतलब मुझे याद है कि मैं खुद भी छोटी थी तभी, आई वाज इन 10th, तो तब से मैं फ्री क्लासेस देती थी छोटे बच्चों को, मेरे जो एरिया के स्लम्स एरिया से
0: लोग रहते
1: हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तब से मैं वो क्लासेस उनको फ्री क्लासेस देती थी। ऑर्फनेजेस जाना, ये सब करना, ये अंदर से था, पहले से जो पहले था उसमें मुझे खुशी मिलती थी करते करते। बहुत टाइम होता चला गया और अभी भी मुझे मेरा ड्रीम वही है। मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करके, अच्छा लगता है, मतलब लगता है
0: फील गुड।
1: यस, आई फील गुड, इवन ऐसा लगता है कि हाँ यही हमारी लाइफ है। आप किसी को हेल्प करके देखो, तभी जो खुशी अंदर से मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन, वो किसी भी काम में आपको नहीं मिलेगा। तो अभी भी मैं वो करती हूँ। बहुत टीनेज गर्ल्स हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, किस तरह से वो आपको अपने आप को सेफ रख सकती है, यानी उनको हाइजीन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या सोशल मीडिया से रिलेटेड हमको किस तरह से अवेयर कर सकते हैं। आजकल थोड़ा टाइम भी ऐसा चल रहा है, कुछ भी इंसिडेंट कभी भी हो जाता
0: है, exactly.
1: स्पेशली फीमेल्स, हम इतने सारे केसेस सुनते रहते हैं सब, उनको हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं कि उनसे कैसे अपने खुद को बचाना है, वो करते हैं। फीमेल्स के लिए करते हैं, लेडीज के लिए, कि हाँ जिनके पास दो बच्चे हैं और उनको पता ही नहीं आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, फैमिली को कैसे प्लान करना है, और उसके बाद में खुद की हेल्थ को भी कैसे देखना है, वो सब भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे आपके घर में कोई बर्थडे, आपने एक सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन किया, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन आप एक ऑर्फनेज में भी जाके करें, एक छोटा सा ट्राइबल किड्स हैं वहां जाके एक छोटा सा सेलिब्रेशन करें। तो लेडीज सुनते भी, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको करना है बट उनको पता ही नहीं हमें क्या कैसे करना है। कोविड टाइम में मैं आपको बता दी, कोविड में मैंने बहुत काम किया टचवुड, और उसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे हमारा मेजर वर्क था। बहुत हमने एक एक टाइम में 300-400 फैमिलीज को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3-4 टाइम्स। सो आई वाज ऑल अलोन, मैंने मेरी खुद की बिल्डिंग से किया है, और फिर जैसे मैंने किया, मैंने सोशल मीडिया पे डाला। काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप सोशल वर्क कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे क्यों डालते हो, बट ऐसा नहीं कि हमें दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे काम हम ऐसे कर रहे हैं जो हम दिखा भी नहीं पाते, हम एवरीथिंग हम लोग नहीं बता रहे हैं। मैंने मेरी मेड के लिए क्या किया, वॉचमैन के लिए क्या किया, बाहर जाते हुए मुझे कौन कौन मिला उसको मैंने क्या दिया, वो तो हम सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे। बट जो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो अवेयर कर रहे हैं कि आप भी करो। तो जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए कि आप सोशल वर्क कर रहे हो तो क्यों डाल रहे हो, बट बहुत सारे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया। काफी लोगों ने फोन करके बोला कि मेरा अमाउंट है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको ही करना है। कोविड में काफी सारे लोग बाहर निकलेंगे, बट वो हेल्प करना चाहते थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया
0: कि आप एक जरिया
1: बन गए. तो काफी सारे लोगों ने एक छोटा छोटा अमाउंट करके मेरे पास बहुत अमाउंट इकट्ठा हुआ कि आप हमारी तरफ से मेडिसिन दो. जैसे अभी इधर कोकन में फ्लड आया था उस टाइम पे मैंने बहुत सारा राशन वहां पहुंचाया. ऐसा नहीं कि वो मेरा था, मतलब हम सबने मिलके किया. मुझे देखा, लोगों ने देखकर मुझे कॉल किया, अप्रोच किया और बोला कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, हम भी शेयर करना चाहते हैं. किया और हम लोगों ने हेल्प किया एक दूसरे से. ऐसे इसी तरह से
0: एक यू नो मुझे आपके बातों से यही मुझे अभी तक पता चला है कि एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है. कि काम तो सब लोग करना चाहते हैं लेकिन वो कैसे करना है या फिर उसे कैसे मैनेज करना है ये सभी लोगों को पता नहीं है. मतलब अगर मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ ऐसे सोशल वर्क करूं लेकिन आई डोंट नो कि मुझे वो कैसे आगे आ रहा है. और मुझे लगता है यही आप में वो क्वालिटी है. और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आपने इतने अच्छे से काम किए या फिर अभी भी कर रहे हो, सो टचवुड आपका ये जो काम है ये ऐसे ही चलता रहे. लेकिन मुझे इन बिटवीन एक मेरे मन में एक सवाल ऐसे आया कि व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी बेटी टीचर बने. बेटी तो कुछ अलग ही कर रही है. बेटी तो अपना कुछ अलग ही नाम कर रही है भाई. मतलब ऑफकोर्स दे फील प्राउड ऑन यू, बट फिर भी उसके बाद फैमिलीज के क्या रिएक्शन?
1: सी मम्मा को तो मैंने यू नो बहुत टाइम पहले ही खो दिया, यू नो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर ही. तो तब तक मेरा ये फील्ड डिसाइड ही नहीं हो पाता है. वो जस्ट यू नो स्टडिंग के, हाँ ठीक है मैं पीएचडी करूंगी. तो वो तो मम्मा का सेक्शन था. तो मम्मा, लेकिन मेरी माय मदर वाज लाइक कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो लाइफ में. मेरी फर्स्ट टीचर मेरी मदर ही थे और उन्होंने ही, आज जो मैं भी हूँ, जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरी सोच है वो मेरी मदर से ही है मेरे पास. तो हाँ, फादर स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाराज थे व्हेन आई क्विट पीएचडी. ऑफकोर्स कोई भी फादर नाराज होगा, यू नो इतना ऊपर तक जाना और फिर उसको छोड़ देना. तो ही वॉज लिटिल अपसेट, बट देन ही यू नो ही सॉ कि हाँ ठीक है, इसका ये पैशन है, ये कुछ अलग करना चाहती है. ठीक है, ही एक्सेप्टेड. बट नाउ ही यू नो ही इज वेरी हैप्पी. वो प्राउड फील करते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ लोग मुझे बुलाते हैं, फेलिसिटेट करते हैं, इतनी सारी जगहों पे यू नो अप्रिशिएट करते हैं, उनके सामने अप्रिशिएट करते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है. वेरी हैप्पी नाउ.
0: एग्जैक्टली, क्योंकि आपने आपको प्रूव करके दिखाया कि चलो मैंने ये नहीं लेकिन मैंने ये भी जो किया है वो बहुत बड़ा है. और ये हर एक चीज के लिए जो स्ट्रगल लगता है वो आपने खुद फेस किया है कि आगे आने के लिए मुझे एक्चुअल में अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब छोड़ के क्विट करके ये सब करना एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का. और वो बहुत ही टफ डिसीजन रहा होगा आपके लिए.
1: डिसीजन भी टफ होता है, इवन समटाइम्स हम डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं. मैंने जब एग्जीबिशन, व्हेन आई स्टार्टेड एग्जीबिशन, तो मुझे ऐसा लगता था यार व्हाट आई एम डूइंग, मतलब आई एम सो क्वालिफाइड. मैं इतना हाई पेड यू नो जॉब कर रही थी और अभी मैं क्या कर रही हूँ. यू नो एग्जीबिशन इज नॉट अ इजी टास्क यार, वो बैग्स एंड ये सब डिस्प्ले करना एंड एवरीथिंग. सो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार ये मैं क्या कर रही हूँ. बट खुद को ही मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं अभी जॉब तो हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, घर में मुझे बैठना नहीं है, तो कुछ तो मुझे करना
0: है.
1: चलो ठीक है करते, कोई बात नहीं, एजुकेशन को साइड में रखते हैं, अपना सिर्फ आई एम हार्ड वर्किंग इसको याद रखते कि नहीं लाइफ में. मेरे पापा हमेशा कहते थे काम कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, हमें हर काम करना चाहिए बस जो हमें खुशी दे रहा है. तो किया स्टार्ट और अभी तो
0: सब बहुत अच्छा चल रहा है. एग्जैक्टली, लेकिन आप एंकरिंग कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि एंकर्स की बहुत ज्यादा क्रेज है मार्केट में. सो वो फील्ड आप कैसे एंजॉय कर रहे हो? क्योंकि कभी कॉलेज में यू ही स्टेज पे आना और वो जस्ट पैशन का पता चलना और उसी पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, ये आपने किया है. सो वो फील्ड आप कैसे एंजॉय कर रहे हो?
1: सी एंकरिंग में मुझे बहुत मजा आता है. यू नो आई एम वेरी जॉली यू नो पर्सन, मुझे हंसना हंसाना बहुत पसंद है. और जब हम किसी महफिल में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो बेस हमारा वही है कि आने वाले जो हमारा क्राउड है, आने वाले जो लोग हैं, गेस्ट हैं, वो खुश होने
0: खुश
1: हो जाए. वो किस तरह से खुश होते हैं वो मुझे अच्छा लगता है. और वो तो मेरा यू नो फोर्टे है लोगों को खुश करना. सो एंकरिंग में सी जब भी मैंने मेरा मैजिकल मॉम स्टार्ट किया, तो मैंने खुद ही अपनी, आज तक मैंने अपने इवेंट्स को खुद ही होस्ट किया है. हार्डली किसी शो में मैंने होस्ट बुलाया है अदर से अलग से, क्योंकि बिकॉज मैं दूसरे कामों में बिजी हूँ, तो एंकर आया है, अदरवाइज मैंने सारे प्रोग्राम खुद ही होस्ट किया है। वो करते करते मुझे, जब मैं खुद के प्रोग्राम होस्ट करती थी तो मुझे सामने से ही ऑफर आया, यार हमारा प्रोग्राम है, संगीत है, वेडिंग है, आप कर लो ना, आप इतना अच्छे से करते हो, मैनेज करते हो। वो तब तक तो मुझे पता ही नहीं था मैं इस प्रोफेशन में जाने वाली
0: हूँ। मतलब क्या बात है, मतलब खुद का एज ए इवेंट ऑर्गेनाइजर स्टार्ट किया जर्नी, लेकिन वो खुद इवेंट करते करते बस यूं ही मेरा इवेंट है मैं ही होस्ट करूंगी, होस्ट करते करते ये भी पता चला कि भाई मेरे अंदर एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है कि चलो मैं लोगों के फंक्शन भी सब होस्ट कर सकती
1: हूँ। और सी टचवुड मुझे बहुत अच्छे होस्टिंग के लिए आते हैं, ऑफर्स आते हैं, बट मैं बहुत सारा ले नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क, बट मुझे होस्टिंग में मजा आता है, अच्छा लगता है।
0: या एग्जैक्टली, मतलब आपको देख के ना मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अगर आपके मन में कोई ख्वाहिश है, कोई इच्छा है, तो अगर आप वो करना चाहते हो तो 100% अगर आप दोगे तो वो डेफिनेटली पूरा होगा, जो आपका ड्रीम है। हर एक वुमेन के पास उसकी खुद की बकेट लिस्ट रहती है और वो बकेट लिस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग वो उसे पूरे नहीं कर पाते। तो आपको देखिए सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वो इतना समय में सबको सेम टाइम मिला है, सबके पास 24 आवर्स ही है, लेकिन वो 24 आवर्स में अगर साइमा मैम इतना सब कुछ कर सकती है तो क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। सो यही पॉजिटिविटी आप, मुझे लगता है कि आप सभी वुमेन्स के लिए यहाँ पर
1: और कर भी रहे हैं, फीमेल्स कर भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में आते हैं तो ये देख कर जाते हैं यार ये मैं भी ऐसे इवेंट्स कर सकती हूँ। तो मेरे ही ग्रुप से कुछ लेडीज ने इसी तरह के ग्रुप स्टार्ट किए हैं, आई एम हैप्पी कि हाँ चलो अच्छा है, वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी पैशन है, वो भी आगे उसके हाँ। मुझे देखा तो यार ये होस्टिंग करती है, मुझे पूछा भी कि हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल करो होस्टिंग, इवन मैं गाइड भी करती हूँ समटाइम्स कि हाँ आप कैसे होस्ट कर सकते हो, कौन से प्रोग्राम होस्ट कर सकते हो। तो अच्छा है, एक दूसरे को इसी तरह
0: सपोर्ट करना चाहिए,
1: करते हैं और हम लोग एक दूसरे को मिलकर ग्रो कर लेते हैं।
0: एग्जैक्टली लेकिन मैम हम लोग ये इंटरव्यू के एंड तक आ चुके हैं और मुझे सिर्फ यही पूछना है कि बहुत सारे फीमेल्स का ऐसा रहता है कि मेरी शादी हो गई, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, सैक्रिफाइस करना है, तो उनकी ख्वाहिशें वहीं पर रुक जाती है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ना वो बिना कुछ एक्सपीरियंस के ही हार मान लेते हैं कि नहीं भाई मेरी अब शादी हो चुकी है या फिर ये मुझे नहीं करना है या फिर मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो यही उनके जो भी आगे के जो कुछ पॉइंट्स है वो यही पे स्टॉप हो जाते हैं। तो आप सभी फीमेल्स को क्या बताना चाहोगे?
1: मैं एक्चुअली मेरा एक मैसेज सिर्फ इतना ही है कि फर्स्ट हार मत मानो कभी भी, लाइफ में हार नहीं मानो, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो, और अगर कन्विंस नहीं हो रहे, फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, बच्चे कन्विंस नहीं हो रहे, ट्राई, कन्विंस करते रहो, कीप ट्राइंग यार, आई मीन नॉक करते रहो, कभी तो वो डोर ओपन
0: होगा,
1: यस और वो होता है। मेरे हस्बैंड ने नहीं कुछ नहीं करना है, घर में बैठना है, लेकिन मैं करती रही, नॉक करती रही कि नहीं अच्छा ठीक है एग्जीबिशन तो कर लू, कुछ तो कर लू, सो वो करती रही है, और लाइफ में कुछ तो करना है। और एक जो हम हमेशा सुनते हैं, सबको पता है वो, एक के वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, अब भले आपके फादर के पास कितना पैसा है, हस्बैंड आपके बहुत अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, ब्रदर आपका कितना वेल टू डू है, लेकिन यू शुड बी इंडिपेंडेंट, आपको अपनी वही इंडिपेंडेंसी आपको अपनी डॉटर्स में देनी है, कि हाँ हम अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, फ्यूचर में भी आपको भी सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ऐसा ही होना है। और ठीक है वो आपका बैक सपोर्ट है, वो कितना भी रहने दीजिए, लेकिन हमारी खुद की पहचान एक अलग होनी चाहिए। तो उस पहचान के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वो एक अलग ही फील होता है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, मतलब
0: मेरा खुद का कुछ अलग,
1: हाँ मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी है, मतलब मुझे मेरे फादर के नाम से या मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जानते, मुझे मेरे नाम से जानते हैं। मेरी डॉटर मुझ पर प्राउड फील करती है कि हाँ मेरी मम्मी कुछ है, है ना, मेरी मम्मी, वो मैं किधर जाती तो मेरी मम्मी को इतने लोग जानते हैं,
0: बेस्ट फीलिंग एवर,
1: एंड शी ऑलवेज सेज कि माय मदर इज अ सुपर हीरो, वो तो एकदम मेरी सुपर हीरो है, तो इट फील्स गुड, अच्छा लगता है।
0: सो बेसिकली यही है कि सिर्फ कोई भी काम में कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, एंड यस, कीप ट्राइंग,
1: डेडिकेशन,
0: डेडिकेशन बहुत ज्यादा
1: जरूरी है, डेडिकेशन।
0: एग्जैक्टली. और मैम आगे यहाँ तक का जो सफर था आपका, वो बहुत प्रॉब्लम्स को भी फेस करके आपने तय किया है, पार किया है, यहाँ तक पहुंचे हो. अब जो सक्सेस मिल रहा है वो आप एंजॉय भी कर रहे हो. लेकिन मुझे सिर्फ यही पूछना है कि आगे के कुछ सालों में, मतलब आगे के 5 साल में, आगे के 5 ईयर्स में आप अपने आप को या फिर मैजिकल मॉम्स को कहाँ पर देखते हो?
1: सी एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैजिकल मॉम्स तो मेरा ड्रीम है, मेरा बेबी है. और अभी तक जैसे लाइक ये मैजिकल मॉम्स का एक सर्टेन एरिया है, नवी मुंबई, नवी मुंबई से थोड़ा सा बाहर मुंबई तक जानते हैं. बट मैजिकल मॉम्स का जो अभी यू नो पहचान है वो है मैजिकल मॉम्स ऑफ इंडिया. तो

0: कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेटली आपने अगर बोला है तो आप डेफिनेटली वो करके रहोगे.
1: यही एक फील चाहिए. और मैंने सोच लिया है, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, मैं ही करूंगी इसे.
0: एग्जैक्टली. सो बहुत आपको बेस्ट विशेस है. आप डेफिनेटली ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. कीप इंस्पायरिंग एवरीवन. और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. एंड आई होप जो भी हमारे लिसनर्स है, स्पेशली जो फीमेल्स है, वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस.
1: थैंक यू सो मच.
0: यस. सो लिसनर्स, हमारे आज की नारी ये स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए थे साइमा मैम. और उनका जो करियर है कि अगर आपके लाइफ में आप एक डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन मैंने गलत लिया है ऐसे फील आपको नहीं होना चाहिए. वो डिसीजन अगर आपने, यस बहुत ज्यादा टफ डिसीजन था, लेकिन वो डिसीजन से आगे आकर खुद की नई पहचान बनाना, खुद के पैरों पर खड़े होना और बहुत सारे फीमेल्स को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके देना, ये जो काम आज मैम ने किया है और उनकी जो एक जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायर करने वाली जर्नी है. और यही जो हमारा आज का स्पेशल पॉडकास्ट था साइमा मैम के साथ, बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया है. आपको ये स्पेशल पॉडकास्ट, स्पेशल इंटरव्यू कैसे लगा आप हमें जरूर बताइएगा. और इसी सेगमेंट में मैं आरजे कोमल यहीं पे ब्रेक लेती हूँ आपका. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: तो लिसनर्स, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए.

0: हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आशय कोमल, आपके दोस्त और शो की होस्ट। आप सभी का स्वागत करते हो आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि आचार्य 90 FM के स्टूडियो से हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, डॉक्टर हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, बहुत सारी बातें तो होती रहती है। लेकिन हमारा आज का सेगमेंट एक टोटली डिफरेंट रहेगा और सबको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आज मेरे साथ, मतलब मैं नाम क्या दूं वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर बोलो, इन्फ्लुएंसर्स बोलो या फिर कुछ और। सो जैसे कि हम सब इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा जो रील्स है वो देखते रहते हैं, तो तभी हमें प्राउड चेंबुरकर हो, प्राउड ठाणेकर हो, मुंबई मेरी जान हो, मुंबई शहर घाटकोपर बस, ये जो पेजेस के जो रील्स देखने मिलते हैं वो बहुत ज्यादा लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं। तो ये पेजेस और ये कम्युनिटी पेजेस जो रन कर रहे हैं वो हेमंत केसरी आज हमारे साथ आचार्य 90 FM के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है हेमंत आपका।
1: थैंक यू सो मच आचार्य 90 FM मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड अगर आपको बताऊं मैं भी इसी कॉलेज का एक्सटर्नल रह चुका हूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं 2012 के बाद स्टेप इन कर रहा हूँ कॉलेज में एंड द कॉलेज इज कम्प्लीटली चेंज।
0: तो क्या बात है, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एलुमिनाई मीट्स एलुमिनाई। सो स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जो एक क्रेज बन चुका है, हम लोग देख रहे हैं कि लोग पागलों की तरह लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों को चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। तो हेमंत आपको ऐसा कब लगा कि मुझे भी कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, मुझे मीडिया में आना चाहिए, मुझे ये सब जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचानी है?
1: ये मेरे अंदर का जो एक जो कीड़ा है मीडिया का, मुझे तब पता था जब मैं आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड आई यूज्ड टू मिमिक्री ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फिर वो होते होते फिर 10th पास होके फिर आई केम टू आचार्य कॉलेज एंड देन लेटर ऑन देयर यूज्ड टू बी अ सर कॉल्ड एज मिस्टर शर्मा। Yeah. I don't remember his first name and he used to teach us OC. तो उन्होंने बोला था कि तेरे लिए ना मीडिया में बहुत स्कोप है, सो व्हाई डोंट यू बिकम अ न्यूज एंकर। तो न्यूज एंकर बनने के चक्कर में आई वांट टू गो फॉर मास मीडिया, बट लेटर ऑन ड्यू टू समथिंग आई परस्यूड माय बीकॉम फ्रॉम ऑफ कोर्स फ्रॉम द सेम कॉलेज। बट इन 2011 समथिंग हैपेंड वेयर आई केम इन टच विद दिस पेज कॉल्ड RVCJ, रजनीकांत सीआरडी जोक्स। सो वो पेज देखे मैं काफी इम्प्रेस था कि मतलब फेसबुक यूज टू बी द कूल थिंग एट दैट टाइम, कि आप मीम्स बनाते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया वॉज नॉट इवन दैट थिंग, फेसबुक यूज टू बी द कूलेस्ट थिंग। सो मैंने अपना खुद का पहला पेज बनाया था सख्त लौंडा, जिसपे एक साल के अंदर वी गॉट नियरली अराउंड 3 लाख फॉलोअर्स। एंड फिर मुझे लगा ऐसा कि क्यों नहीं हम अपने चेंबूर को रिप्रेजेंट करें सोशल मीडिया पे, जहां पे मैं रहता हूँ उसको

0: डाउनलोड करें हम.
1: Yes.
0: तो फिर हमने वो पेज बनाया. इस पेज का नाम पहले था चेंबूर लवर्स.
1: चेंबूर लवर्स
0: एंड लेटर ऑन आई जस्ट गॉट अस क्लिक की चेंबूर लवर्स यार क्लिक नहीं हो रहा है. फिर बाद में मैंने सोचा कि पेज का नाम आई की पैसा
1: इंटरेस्टिंग और यू नो कैची.
0: सो आई केप्ट दिस प्राउड चेंबूरकर एंड आई स्वेयर मुझे नहीं मालूम था कि प्राउड चेंबूरकर किस दिन एक नाम बनेगा. आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई फॉलोअर्स एंड दे आर माई फैमिली. दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली. आई वुड से कि वो मुझे आज भी कहीं अगर चेंबूर में कुछ अगर हुआ, कुछ और हादसा होता है, फायर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी अगर होता है, दे सेंड मी द क्लिप्स कि भैया आप ये डालो.
1: Okay.
0: भाई ये डालिए प्लीज करके एंड प्लीज अलर्ट चेंबूर गर्ल्स. तो आई एम हैप्पी फॉर दैट. सो समवेयर वी केम ऑन फेसबुक इन 2013 एंड देन लेटर ऑन इन 2014 वी केम ऑन इंस्टाग्राम.
1: ओके.
0: एंड आफ्टर दैट द जर्नी स्टार्टेड स्लोली स्लोली. मैं यही बोलूंगा कि प्राउड चेंबूर का रातों रात बड़ा है
1: नहीं.
0: इट टुक टाइम.
1: यस,
0: इट टुक टाइम, बट आई एम हैप्पी कि आज जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है.
1: यस,
0: माय गॉड स्पेस.
1: क्या बात है. सो बेसिकली ये सब पेजेस है, उसमें से पहला पेज कौन सा स्टार्ट हुआ था?
0: सबसे पहला पेज जो था प्राउड चेंबूर का था इंस्टाग्राम पे.
1: इंस्टाग्राम पे. ओके. एंड देन इट विल लाइक घाटकोपर बस एंड ऑल एवरीथिंग. घाटकोपर.
0: यस, आई वुड से घाटकोपर बस तो भी रिसेंटली स्टार्ट किया हमने 2 साल पहले.
1: ओके.
0: एंड सबसे पहला प्राउड चेंबूर का था. इट टुक मी आई गेस अराउंड 7 years टू कम्प्लीट 10,000 फॉलोअर्स. Yes.
1: It's long journey.
0: Yes, yes, yes. फिर 1 साल के अंदर आई गेस मेरे 50 से 60 हजार फॉलोअर्स बढ़े.
1: टोटली.
0: एब्सोल्यूटली. इवन मुंबई मेरी जान, उसके बाद मुंबई मेरी जान मैंने स्टार्ट किया था 2015 में. सो वी हैव गॉट नियरली अराउंड 2,678,000 फॉलोअर्स नाउ, विच इज अ कोर फॉलोअर्स मुंबई के. मतलब जहां तक मुझे पता है कम्युनिटी पेजेस इतने नहीं होते थे मुंबई के. हम लोग 2 लोग थे ऑल ओवर मुंबई. एक मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, नितिन पाटुडे. ही स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड दादर मुंबई का.
1: यस.
0: और मेरा पेज था प्राउड
1: चेंबूर का.
0: तो वो मैं उनको देख के इंस्पायर होता एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड.
1: पहली ऐसी कौन सी वीडियो डाली थी कि वो मतलब आपने इतना मतलब उसके बारे में सोचा भी नहीं था कि उसे इतने ज्यादा व्यूज और इतना ज्यादा रीच मिलेगा चेंबूर की?
0: अगर चेंबूर एक किंगडम है तो आई वुड से अगर चेंबूर एक एम्पायर है तो ये जो किंग है उसके वो है चेंबूर का राजा. सो चेंबूर के राजा का जो पहला मोर है, सो उनका जो पहला जो एक वीडियो था उनके आगमन का वीडियो था.
1: yes.
0: जहाँ पे लोग भीड़ एकदम मतलब उनके आगमन का वीडियो, लोग ऐसे नाच रहे जश्न उल्लास में. और हमने वहाँ पे पोस्ट किया था कि आई नाउ फील कि समवेयर इट इज रॉन्ग बट नो लालबाग नो दादर आई गेस इट्स आवर चेंबूर. एंड दैट वीडियो गॉट नियरली अराउंड 40,000 शेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो 40,000 शेयर एट दैट टाइम वी गॉट. और उसके बाद से फिर पेज वो चल पड़ा. तो वो चीज है. एंड सेकेंड आई वुड से कि गणपति के टाइम की ही बात है. मेरे घर में पंडित जी थे एंड वो एक्चुअली ही स्पेशली एबल्ड.
1: ओके.
0: वो ही स्पेशली एबल्ड, उनको शायद पोलियो हो सकता है, उनको वो है. और वो अपने माँ बाप के अकेले बेटे हैं.
1: ओके.
0: तो जब पंडित जी आए तो पंडित वो पूजा करते करते रो रहे थे.
1: अच्छा.
0: सो मैं बोला क्यों रो रहे पंडित जी? तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी माँ बहुत गरीब हो, तो उनकी मम्मी जो है उनकी मम्मी को कुछ IAS कुछ अटैक आया था. एट दैट टाइम शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन सम हॉस्पिटल और उसका बहुत फीस था.
1: Okay.
0: और एक पंडित जी का पैसे है नहीं क्योंकि यार ऑफ कोर्स स्पेशली एबल्ड फर्स्ट एंड सेकंड उतना पैसे है नहीं उनके पास, वो खुद भाड़े घर में रह रहे. पता नहीं क्या है, पापा का आशीर्वाद है. मैंने पापा का नाम लिया, मैंने पंडित जी आपको नसीब का जो रहेगा पापा डाल देगा. हमने वो पोस्ट किया. पापा का इतना आशीर्वाद है कि पंडित जी को अच्छा खासा हेल्प आया. हेल्प मतलब पैसा उनके पास नहीं है लेकिन कोई तो एक था भगवान का फरिश्ता, भगवान का बंदा जिसने आके उनके सारे फीस पे कर दिया. जो 2.5-3 लाख पूरा पे किया.
1: ओह माय गॉड.
0: तो दैट इज इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहा. सो आई फील हैप्पी फॉर दैट.
1: और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये है सोशल मीडिया की ताकत। मतलब सोशल मीडिया, मतलब लोग, मैं वो टॉपिक के पर आने वाली हूँ कि सोशल मीडिया को लोग बहुत बार बुरा भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसका ये है, लेकिन ये भी है कि कुछ लोग हैं जैसे हेमंत जैसे जो ऐसी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो एक्चुअल में किसी का यू नो फायदा कर रहे हैं, एक्चुअल में लोगों को प्रॉफिट दिला रहे हैं और एक्चुअली लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लाइक मैंने आपका कॉन्टेंट देखा, इतने सारे हिडन जिम्स है चेंबूर में, चेंबूर की बात नहीं करें बल्कि जितने भी आपके पेजेस है आपको बहुत ज्यादा कुछ हिडन जिम्स, कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। तो आप ये ऐसा कंटेंट है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप पहले स्टार्टिंग में, अभी तो मतलब लोग आपके पास आते हैं कि चलो भाई ये है तो ये इसके बारे में बताओ या फिर, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज आई थी या फिर स्टार्टिंग में जब आपने सोचा कि चलो इसके बारे में हम लोग कुछ सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या फिर ये वाला कॉन्टेंट है ये हम लोग बनाते, तो स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्टीज आई थी?
0: एब्सोल्युटली यस। डिफिकल्टीज नाम ये आती है फर्स्ट की, ऑनेस्टली बोलो तो डिफिकल्टी है भी और नहीं भी।
1: ओके।
0: डिफिकल्टीज अभी होती है कि पीपल दोज हु जॉइन यू एट सम लेवल दे स्टार्ट व्हेन दे विथड्रॉ बैक, हियर इज द फर्स्ट थिंग, योर ड्रीम ब्रेक्स, वो एक डिफिकल्टी होती है। सेकेंड ये होती है मैम कि यू हैव टू बी वेरी गुड विद द कॉन्टेंट जनरेशन, इट शुड बी हियर कि आपको कौन सा कंटेंट डालना है, कौन से कंटेंट को कैसा प्रेजेंट करना है।
1: मैं भी मोस्ट इम्पोर्टेंट,
0: मैं अगर एक नॉर्मल एक मरीन ड्राइव चले जाओ वैसे बारिश का मैं वीडियो लेके डाल दू वैसे तो वो नहीं काम करेगा। यू हैव टू मेक श्योर यू आर रोमांटिसाइजिंग द एंटायर वीडियो, यू आर एडिटिंग एवरीथिंग, सो यू शुड नो व्हाट यू हैव टू पोस्ट, सो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज कि कौन सी चीज को कैसा पोस्ट करना है,
1: कैसे कर रहे हो किसी भी चीज को, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
0: दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकता हूँ कि डायमंड गार्डन का जो प्लेन है अभी बहुत तो बोलते हैं बोरिंग हो चुका है, समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू समथिंग न्यू, बट वो 90s किड्स के लिए एक्चुअली इमोशन है। अगर आप देखो मैं अपने मम्मी पापा डैडी के साथ में जाता था वहां पे बैठ के भेलपूरी खरीद के बाहर से बैठ के और मेरा ख्वाब होता था कि किस दिन मैं प्लेन को उड़ाऊंगा, तो उसको प्रेजेंट करना चाहिए मैम।
1: तो जैसे कि आपने बताया कि ये डिफिकल्टीज तो होती है, लेकिन अब जाके हम लोग देख रहे हैं कि आपने बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ प्लेस एक्सप्लोर किए, फूड ज्यादा एक्सप्लोर किया है और कई ऐसे इंसिडेंट है जो चेंबूर में या फिर कई और जो भी आपके पेजेस है कम्युनिटी पेजेस है वहां पर जाके आपने एक्सप्लोर किए है। सबसे ज्यादा ये अलग अलग पार्ट है, लाइक यू नो एक कोई कंटेंट एक्सप्लोर करना, एक फूड को एक्सप्लोर करना और किसी जगह को एक्सप्लोर करना, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, किसी पर्टिकुलर थिंग्स मतलब यानी कि कोई जगह को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है या फिर कोई फूड को एक्सप्लोर करना या फिर कैसे?
0: ऑनेस्टली मैम ऐसा कुछ है नहीं। मैं सच बोलता हूँ, कॉन्टेंट जनरेट करना, शूट करना, इट्स माई पैशन एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ कि भगवान ने, ऊपर वाले मालिक ने मुझे मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन में दिया।
1: सो
0: जब मैं कैमरा पकड़ता हूँ, जब मैं कैमरा हैंडल करता हूँ, जब मैं शूट करता हूँ, तो फूड हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। मुझे आई फील दैट सेटिस्फेक्शन एंड इमेंस ग्रेटिट्यूड कि एटलीस्ट जो मेरा पैशन में वो कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते ना मैम, यू हैव नो आइडिया आप उसमें 12 घंटा दें, 28 घंटा दे, 24 घंटा दे या 3-3 दिन दे, यू नेवर गेट टायर्ड ऑनेस्टली। सो और सो या फूड वगैरह इट हैज बिकम वेरी मिनिस्क्यूल फॉर मी बिकॉज राइट नाउ मैं फूड 100 जगह टेस्ट कर चुका हूँ, मैं 100 जगह टेस्ट कर चुका हूँ मैं फूड तो वैसा है। और बट वॉट इज द मोस्ट अल्टीमेट सेटिस्फाइंग थिंग फॉर मी इज व्हेन आई मेक अ री आई पोस्ट ऑन माई पेज एंड देन आई गेट टू नो कि बॉस मैं चेंबूर वालों को या मुंबई वालों को कुछ नया दे रहा हूँ, दैट इज बेस्ट पार्ट।
1: ओके, अभी मैंने बात की कि स्टार्टिंग में आप लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, ये अकेले का काम नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: भी नहीं, क्योंकि जब आप एक कोई काम हाथ में लेते हो तो कब तक आप अकेले जाओगे, कब तक आप अकेले घूमोगे, कब तक आप अकेले शूट करोगे, क्योंकि अब आपका एम्पायर भी बड़ा हो चुका है या टचवुड वो ऐसे ही बढ़ता रहे, तो टीम कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे सोशल मीडिया हैंडलिंग में और पूरा ये सब जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो इसके लिए
0: टीम। मैम टीम ऑफ कोर्स टीम बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, टीम टीम का एक बड़ा योगदान होता है और लोग जो आप जोड़ते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट.
1: यस
0: ऑफ कोर्स. अब मेरे साथ में ऐसा है मैम कि आई मेक श्योर कि आई हैंडल मोस्ट ऑफ द पार्ट. मैंने टीम रखे हैं बट फॉर मिडिल स्कूल थिंग लाइक एडिटिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, आई वुड से फील्ड वर्क के लिए मैंने एक बंदे को रखा है, साथ में अपने दो लोगों को रखा है. फॉर से थाने के पेज के लिए मेरी अलग टीम है, तो वो अलग थाने कवर करती है. घाटकोपर के लिए मेरे दो लोगों की टीम है, तो वैसे ही है. बट यू हैव टू अगेन टीम हैंडल करना, इट्स मोर लाइक अ टेकिंग अ फैमिली. एंड सेकेंड थिंग, आज के डेट में चीजें इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, बीट रिलेशनशिप बीट टीम वो ऐसे टूटती है, ऐसे टूटती है मैम. सो अगेन टीम हैंडलिंग इज एन आर्ट एंड नॉट एवरी वन कैन डू दिस एंड आई एम एन आर्टिस्ट.
1: सी थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि यू नो मैं अभी की जनरेशन भी हम लोग देख रहे हैं, लाइक वी आर 90s किड्स. सो अभी की जो जनरेशन है, जो अभी जो रिसेंटली सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम पर, मैंने ऐसे भी इंसिडेंट देखे कि लोगों के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लोगों को व्यूज ज्यादा नहीं मिल रहे, लोगों को रीच नहीं ज्यादा मिल रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर दे फील सैड, दे फील बैड फॉर इट कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो बहुत ज्यादा यू नो वो बात का इश्यूज कर रहे हैं. तो ऐसे आप ऐसे लोगों को लिए कुछ?
0: I would say it's a virtual world. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे बात बोला था back in 2018 जब मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मतलब इतने फॉलोअर उतर नहीं बढ़ रहे थे. मैं तो डिप्रेशन में नहीं गया था, ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा लाइफ. सो योर फॉलोअर्स लाइक्स, ऑफकोर्स वेन यू हैव फॉलोअर्स इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व देम द गुड कॉन्टेंट. लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे तो डिप्रेशन में मत जाओ यार. थिंक ओवर इट, वर्क ऑन एल्गोरिथम. अभी रिसेंटली केस था कि सम इन्फ्लुएंसरशिप पॉजिटिव है, शी कमिटेड सुसाइड. सो जान दे के फायदा कुछ नहीं मैम उस पर, या फिर सोचना नहीं है. आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे तो थिंक ओवर इट. फॉर एग्जाम्पल पीपल कम टू मी, आई ऑल्सो टीच पीपल हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द कॉन्टेंट. आई टीच पीपल हाउ टू वर्क ऑन द कॉन्टेंट. तो मैं ऐसा काम करता हूँ. सो डोंट थिंक, इसको टेक्निकली लीजिए, सिंपल सी बात है, दिल पे मत लीजिए, दिमाग में लीजिए. दिल पे लेंगे तो एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा और उल्टे पुलटे थॉट्स आएंगे. दिमाग में लेंगे तो आप सोल्यूशन भागेंगे, सोल्यूशन ढूंढना भागेंगे उसके लिए. सो वर्क ऑन योर एल्गोरिथम, वर्क ऑन योर कॉन्टेंट, वर्क ऑन योर हुक लाइन, वर्क ऑन योर स्ट्रेटेजी एंड बिगेस्ट पार्ट अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम. बिगेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, एक 22 साल का लड़का है मेरे नोन में, आई नो हिम एंड ही हैज स्टार्टेड दिस पेज कॉल्ड इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स एंड जस्ट बिकॉज ही नोज द एल्गोरिथम ही हैज क्रॉस्ड 400 to 500k फॉलोअर्स लाइक इन 6 months. सो द बिगेस्ट थिंग इज क्रैकिंग द कोड. सो यस, क्रैक द कोड.
1: ऑडियंस को क्या चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए.
0: एब्सोल्युटली क्रैक द कोड. आई नो पीपल दोज हु आर नॉट इवन वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कॉन्टेंट वो करने के लिए बनाने के लिए डालते हैं एंड दे आर यूजिंग कम्प्लीटली AI एंड दे हैव गॉट 400 to 500k फॉलोअर्स.
1: ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जैसे कि आपने अभी कहा कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, ये तो सब होता रहता है. आपके साथ भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था लाइक फेसबुक पेज को लेकर, को वहां पे मिलियंस में फॉलोअर तक पहुंचना और वो पेज डिलीट हो जाना. तो फिर ऐसे ये चीज को आपने कैसे हैंडल किया था, क्या बताना चाहोगे?
0: ये बोल सकते हैं कि मेरा मतलब जब मालूम पड़ा था, मैं सवेरे उठ के ऐसा द फर्स्ट थिंग आई डू इज व्हेनेवर आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई जस्ट लाई डाउन फॉर 10 मिनट्स, आई गो डीप इनटू माय माइंड एंड आई जस्ट थैंक गॉड फॉर आई एग्जिस्ट, दैट्स इट. देन आई वेक अप, द फर्स्ट थिंग आई सी इज माय फोन, माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस.
1: यस,
0: जब मेरा वो 6 मिनट का पेज गया तो रोना नहीं बोल सकते लेकिन तकलीफ हुआ. एंड आई नो वन थिंग कि सर सलामत तो पगड़ी हजार,
1: नॉट 50,
0: पगड़ी हजार. तो अभी मैं जिंदा हूँ, क्रिएटर जिंदा है ना, तो मैं और पेज बना लूंगा, इसको लेके मैं रोऊं, डिप्रेशन में जाऊं, अपने एंग्जाइटी को पालूं, कुछ नहीं, ठीक है। 6 मिलियन का पेज था, बिल्ड करने में काफी साल हो गए थे, लेकिन ठीक है फिर से बना लेंगे। और ऐसे मेरे एक पेजेस नहीं है फेसबुक पर, कम से कम 70-80 पेजेस अभी भी है, टेंशन नहीं है।
1: नाइस, मतलब इतने पॉजिटिवली आपने वो इंसिडेंट को लिया है।
0: एब्सोल्युटली यस, सी आई नो वन थिंग,
1: यस,
0: एक मैसेज में दे नहीं सकता मैं, मुझे अपना नहीं, मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं यूथ को मैसेज दूँ, लेकिन दिस इज माय स्ट्रेटजी। व्हेनेवर यू हैव गॉट, व्हेनेवर यू हैव बिल्ट योर 140, व्हेनेवर यू हैव बिल्ट योर वन प्लेटफॉर्म, साइमल्टेनियसली स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर वन। धीरे धीरे इसको बिल्ड करो, क्योंकि अगर आप एक पे टिक करोगे तो फिर कभी भी टा सकते हैं। एवरीथिंग इज पेरिशेबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पेरिशेबल। तो
1: आपको सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे क्या देखना पसंद है? मतलब क्योंकि जैसे लोगों की चॉइस होती है ना, कोई सिर्फ म्यूजिक वीडियोस देखते हैं, कोई कुछ देखता है, तो आपको ज्यादा क्या पसंद है?
0: कच्चा बादाम बादाम।
1: नाइस।
0: नहीं ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे ऑनेस्टली राइट नाउ आई लाइक वॉचिंग एक प्रेमानंद जी महाराज के वीडियोस, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टाग्राम, बीट एवरीवेयर, आई वॉच हिज वीडियोस, बिकॉज अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। मैंने चीज नोटिस किया है, अब मैं फिर से इतना प्रवचन नहीं दूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं प्रवचन दूं, लेकिन दुनिया के पीछे आई एम, बाय द वे आई एम 33 राइट नाउ, सो थोड़ा बड़ा हूं आप लोगों से, एज ए बड़ा भाई एडवाइस ले सकते हैं आप लोग। दुनिया के पीछे भागेंगे आप तो आपको मायूसी मिलेगी, दुनिया के पीछे भागेंगे आपको मायूसी मिलेगी। अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन और प्रेम जो है वो भगवान से ही मिलेगा। भगवान आप कोई भी रिलीजन के हो, आप मुस्लिम है तो आप अपना मजहब फॉलो कीजिए, आप अगर हिंदू है तो आप अपना ग्रंथ फॉलो कीजिए, आप अगर बुद्धिस्ट है तो अपना ग्रंथ फॉलो कीजिए, बट अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन एंड लव यू विल गेट ओनली फ्रॉम गॉड।
1: ओके, वन मोर थिंग, कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हम लोग इंस्टाग्राम देखते हैं या फिर कोई और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखते हैं, कोई भी चीज हो, मतलब एक चीज जिसमें हमें देखकर मे बी कुछ बुरे वर्ड्स मुंह से निकले, ऐसा कंटेंट जब वायरल हो जाता है, ऐसे कंटेंट को जब मिलियंस में व्यूज मिलते हैं, व्हाई दिस, और लोगों को भी वो पसंद आ रहा है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, तो ये सब देख के क्या फील होता है?
0: आई फील दैट आई ऑलवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल नो कॉन्टेंट इज बैड मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ये मेरा धंधा ही है, मेरा काम है। नो कॉन्टेंट इज बैड फॉर मी, मेरे लिए सारा कॉन्टेंट बेस्ट ही है। अगर वो वीडियो, अगर फॉर एग्जाम्पल आजकल इंस्टाग्राम पे एक यूपीए का डांसर है, सन्नी डांसर, गोरखपुर का है, वो कोई भोजपुरी गाने पर डांस करता है, मोटा सा, ही इज वेरी वेरी मोटा इज एक्चुअली रॉन्ग वर्ड, बट ही इज टैलेंटेड, इफ यू सी उसकी एजिलिटी, उसका स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। So, अगर आप देखें ना उसका डांस वायरल हो रहा है, रीजन क्या पता है? ही इज डूइंग समथिंग यूनिक, लोगों को एक्चुअली यूनिक चीजें पसंद है। वो टाइम गया जब लोग स्क्रीन पे एक एक्टर खड़ा है ऐसा मसल बॉडी बिल्डिंग लेके ऐसा बाहें फैला रहा है, देन पीपल लाइक अरे क्या आप नहीं, क्या बात हो, नहीं, लोगों को शाहरुख पसंद है, लोगों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है। तो सिंपल सेम थिंग है, लोगों को रॉ चीज बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल 2018 में एक वायरल ट्रेंड हुआ था, लेडी यूज टू कम कि हेलो गाइस चाय पी लो, गरम है, तो उसका वो वायरल होने का रीजन क्या था? बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द लीग, एंड द ओनली थिंग व्हिच आई रियली हेट इज दैट पीपल व्हेन दे सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई देमसेल्फ फॉर गेटिंग व्यूज एंड लाइक्स, दैट इज व्हाट आई हेट द मोस्ट। तो वो एक चीज है, अगेन मेरे लिए वो भी कॉन्टेंट है बिकॉज मैं फील्ड में ही हूं, तो वो चीज है।
1: यस, ओके, सो अब मैं फैमिली के बात करूंगी, क्योंकि आपने बताया कि आपकी फैमिली थोड़ा, मतलब ये हम लोग के जब भी मॉम डैड रहते थे तो मॉम डैड का कैसा कहना था कि जॉब पे जाओ, कोई स्पेसिफिक जॉब करो, इतने अच्छे से पैसे कमा कर एक अमाउंट घर पे लेके आओ। तो जब आपने ये स्टार्ट किया, लाइक इसमें आपने बोला कि मैंने मेरे पैशन को, मैंने मेरा प्रोफेशन चूज किया है और इसमें आप आगे चल रहे हो, तो फैमिली के स्टार्टिंग में रिएक्शन क्या थे और अभी के रिएक्शन क्या थे और फैमिली कैसे रिएक्ट होती है आपके ये सब काम पर?
0: मेरे मॉम डैड बोलू बहुत भोले, बहुत भोले, मतलब बहुत भोले. आज भी फोन करेंगे, मतलब मैं अगर बाहर रहूंगा 10 बजे, पापा फोन करेंगे, हेलो कहाँ पे हो, घर कब तक आओगे. तो वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने, मतलब वो ऐसे हैं कि अगर देखेंगे किसी को सामने वाला भूखा है तो अपनी रोटी छोड़ देंगे. वो ऐसे लोग हैं ऑनेस्टली. और ये उनके कर्मों का फल है जो आई गेस हमको मिलता है. मुझे मिला है, स्पेसिफिकली मुझे मिला है. हम तीन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ.
1: अच्छा,
0: तो वो चीज है. एंड लकीली आई हैव ऑलवेज मेड अ बैलेंस बिटवीन माई वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ. तो मुझे मालूम था कि एज सून एज आई हैव क्रॉस्ड 24 के एज, आई हैव टू गिव सम मनी टू माई पेरेंट्स. तो आई हैव आई यूज टू वर्क समवेयर. मैं काम भी करता था बाहर से. मैं मेहनत मैंने बहुत किया था ऑनेस्टली. मैं बाहर काम भी करता था, पैसे भी लाता था. और जब पैसे नहीं होते थे तो आई वुड से मेरा बड़ा भाई, मैं उनका नाम कोट करूंगा, प्रमोद केसरी. वो मेरे दूसरे पिता समान है. वो मेरे दूसरे पिता समान है. प्रमोद केसरी, पंकज केसरी, ये लोग मेरे बड़े भाई नहीं, ये लोग मेरे पिता समान है. दे हैव एक्चुअली पैम्पर्ड,
1: बिग सपोर्टर,
0: बिग सपोर्टर्स ऑफकोर्स. क्योंकि उनके उनके बिजनेस है, उनके बिजनेस है. और ऐसे नहीं कि लोग वेल टू डू है बहुत, लेकिन उनका बिजनेस और उनके अंदर एक इच्छा है कि हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. छोटा भाई करना करना कोई दिक्कत नहीं है उसको. लेकिन स्टिल, बट आई हैव ऑल्सो वर्क इक्वली हार्ड टू मेक श्योर दैट आई एम गिविंग माई फैमिली समथिंग समथिंग. एंड नाउ आपको बता दूं मैम कि मैं जब मैंने प्राउड चेंबर को स्टार्ट किया तो 7 साल मैंने कुछ नहीं कमाया था. 7 साल तक मैंने कुछ नहीं कमाया था प्राउड चेंबर से. अगर आप 13 लें तो 2020 कोविड तक मैंने कुछ नहीं कमाया था उसमें. प्राउड चेंबर से कुछ नहीं कमाया था. मतलब लोग मुझे बोला था क्या करने का, शूट करने का, कितना, 150 रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा, ऐसे. आई यूज्ड टू कोट 3000, 200 रुपए दूंगा. ये लोगों का एटीट्यूड था. कोविड ने बहुत लोगों की आंखें खोली. तो उस टाइम पे भी मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. और मेरे पेरेंट्स अभी वो मुझे सिर्फ दुआएं देते हैं.
1: How sweet.
0: अभी मुझे सिर्फ दुआएं देते हैं. यहाँ पे भी आने से पहले I am mama's boy.
1: Oh, nice. So sweet.
0: I love my father like anything. Mere pitaji aaj bhi wo Instagram pe, he's around 71. आज भी Instagram पे बैठते हैं. तो उन्होंने Instagram इसलिए इंस्टॉल किया ताकि वो मेरे रील्स देख सके. He follows all my pages. And when I post a reel, Hemant, कहाँ का तुम डाले थे रील यार, खाने का, खाना अच्छा है वहाँ का, हम जाएंगे. And then he sometimes when he goes, he meets his friends. तो मेरा बेटा, तो अपने बेटे का मैं काम दिखाता हूँ. ये मेरा बेटा है.
1: Proud dad, nice.
0: By God's grace, हनुमान जी की कृपा है. So yes, ये मेरी जर्नी रही है.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो एट दी एंड हमने बहुत बातें तो की, आपके बारे में पता चला, लाइक कंटेंट वगैरह वगैरह ये सब बात कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी लोग जो न्यू कमर्स हैं वो आ रहे हैं सोशल मीडिया को देखकर कि चलो सोशल मीडिया से बहुत पैसा मिलता है, सोशल मीडिया पे पैसा है, सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं, वीडियो बनाकर पैसा कमाते हैं तो उनको कुछ जॉब नहीं करनी पड़ती. ऐसे सब बहुत सारे बातें सामने आती है ऐसी सब. तो वो क्या है, वो सच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ. कि लोग जो बोलते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स है तो मैं इतना कमा रही हूँ, मैं घर बैठ के लाखों में कमा रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, तो वो सच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ. और आप ये सच सभी लोगों को बताएं.
0: देखिए मैम, मैं स्टिल आई फील कि आई एम अ वेरी स्मॉल क्रिएटर फॉर दिस. बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत टॉप लेवल पे दोस्त हैं मेरे. आपने कभी किसी को देखा ना जो लोग मशीन गन या फिर ऐसा कुछ AK-47 टाइप चलाते हैं, कभी आपने मूवी में देखा है?
1: हाँ,
0: तो जो AK-47 का जो बेस होता है ना, पता नहीं उसको हैंडल बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो आपके कंधे पे लगी होती है. सो व्हेन यू पुल द ट्रिगर, जितनी फोर्स से गोली बाहर निकलती है उतने ही फोर्स से वो बंदूक पीछे भी आता है आपके कंधे पर असर आता है. अगर आप ट्रेंड नहीं है वो चलाने में तो आपका कंधा एक बार में टूट भी सकता है. द सेम थिंग, एवरीथिंग हैज एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल रिएक्शन. ऐसे बहुत से लोग हैं जो महीने का 8 लाख, 7 लाख, 30 लाख कमाते हैं, बट देयर लाइफ इज वेरी मच डार्क, वेरी मच सैड. दे डोंट शो ऑन सोशल मीडिया. There are people, those who are earning 7 to 8 lakh rupees a month, 10 lakh rupees a month, they are very happy.
1: Yeah.
0: And you know what is common between in these two people? They have learned a lot.
1: Yeah.
0: सबको दिखता है कि पैसा बहुत है. सबको दिखता है भाई 6 लाख कमा रहा है, ये कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा. मेरे पास लोग आए, मेरे पास लोग आए भाई आप तो कम से कम 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं. 1 करोड़ रुपए उसमें कितने जीरो होते हैं मैं पूछ रहा हूँ. तो यू नीड टू फर्स्ट लर्न फर्स्ट. लोग आते हैं मेरे पास कि भाई आपने इतना पैसा कमाया, कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाया होगा, आपने ये किया है वो किया है. मेरा सिर्फ एक ही चीज रहा है कि आप सीखिए पहले.
1: Exactly.
0: आप सीखिए पहले किसी एक क्रिएटर के अंडर में जाइए, उसके साथ में कम से कम 2 साल बिताइए. उसके साथ में कम से कम 2 साल बिताइए, उसको अपना 2 साल पूरी तरह दीजिए. 2 साल का पूरा मतलब मैं बोलूंगा 24 घंटा. आपकी नींद जो होती है ना 8 घंटे की, आपने 10 घंटा निकाल के 14 घंटा उसको दो. आपको रगड़ना होगा पहले, पहले आपको आग में तपना होगा, तब जाके आप सोना वो कुंदन बनेगा.
1: yes.
0: तो वो चीज है. हमने भी दिया है, हमने बहुत दिया है, हमने बगैर पेमेंट के काम किया है. ऐसा भी रहा है कि पेमेंट नहीं मिला है, लोगों ने फ्रॉड किया, लेकिन उसके बाद में जो हमको जो सीख मिली है, जो कैमरा एंगल सीखने मिला, कॉन्टेंट की स्ट्रेटेजी सीखने जो मिली है, फिर बाद में बहुत कुछ जो मिला. आपको मैं बात बोलता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा. I met a very big celebrity from Chembur, a very big celebrity, a Bollywood actor. Take care. And he knew my page.
1: Oh.
0: From Chembur.
1: क्या बात है?
0: Yes. I met him. I in some event I had a chance to meet him. And his bodyguard is a friend, basically of my brother. So एक event में जाने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला, and he knew my page.
1: Oh.
0: मतलब आई टोल्ड हिम सर आई हैव स्मॉल पेज ऑफ चेंबूर एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ लीगेसी सो ही इज लाइक यू नाइस नाइस आई हैव दिस पेज फ्रॉम चेंबूर कर एंड ही वाज वेरी हम्बल वेरी लविंग सो दैट इज इन शॉर्ट. अभी लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब स्टार से मिल गया ये मिल गया. अगेन हमने सीखा है, वो टाइम दिया है, 2-3 साल दिया है, किस्सा है, हमने
1: जीरो से स्टार्ट किया.
0: तो आपको पहले घिसना है, बहुत घिसना है आपको. yes. पहले काम सीखना है. आप अचानक से आओगे बोलोगे मिलियन व्यूज नहीं आ रहा, डिप्रेशन में एंजाइटी में जाओगे, इतना फास्ट चीज
1: नहीं होता है यार.
0: फास्ट आप और हम हुए हैं, सोशल मीडिया ने हमारे थॉट्स को फास्ट किया है, लेकिन जो बेसिक्स है 2+2=4 ही होता है. आप 2+2 को 22 नहीं बना सकते.
1: मुझे लगता है जितने भी न्यू बिगिनर्स हैं, मतलब जो है जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी. हेमंत आपने बहुत अच्छी मतलब मैं अच्छी नहीं बोलूंगी, जो सच है वो बताया, जो रियलिटी है वो आपने ये पूरे बातों में बताई है. एट द एंड मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपके जितने भी कम्युनिटी पेजेस है, आप जितना भी जो भी कॉन्टेंट आप लोगों के लिए डाल रहे हो, लोग वो पसंद कर रहे हो, वो ऐसे ही बढ़ता जाए. और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि एनी सिंपल मैसेज और एनीथिंग फॉर बिगिनर्स की क्या मतलब क्या रहना चाहिए उनमें.
0: बिगिनर्स के लिए जो मतलब सोशल मीडिया अगेन किसी भी क्रिएटर के अंडर में जाइए, उसके अंडर में काम कीजिए. मिनिमम 2 साल काम कीजिए. उसके साथ में एडिटिंग सीखिए, बैठ के कैमरा एंगल हैंडलिंग सीखिए, फील्ड पे उतरिए, भागिए भले पसीना भागिए. एंड वंस यू हैव डन दैट, वंस यू नो दैट कि यू हैव लर्न सर्टेन थिंग, एंड देन यू नीड टू टेक अ स्मॉल स्लो स्टार्ट. और वो करते करते मैं आपको एक लास्ट चीज बोलूंगा कि ऐसे नहीं कि आपने इंस्टाग्राम पे पेज चालू कर लिया, यूट्यूब पे कर लिया, तो आपने फिर आप वेट करेंगे कि मुझे कब डील आएगा, डील आएगा, ऐसे करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे. यू नीड टू अपना पेज ग्रो कर रहे हैं, साइड बाय साइड जॉब भी करते रहिए. जो मैंने भी किया, आई हैव वर्क्ड इन कॉल सेंटर्स, मैंने कॉल सेंटर में काम किया है, मैं कपड़ों की दुकान में मैंने काम किया है. बिकॉज ऑफकोर्स आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल फैमिली, घर में तो पैसे देने ही है, तो वो सब है. तो टेक केयर ऑफ फैमिली, टेक केयर ऑफ योर पैशन, एंड दैट्स हाउ यू विल ग्रो. और ये चीज बहुत कम लोग समझते हैं, सबको लगता है कि पैशन फॉलो करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लगन चाहिए और दिमाग चाहिए बस. सो दिमाग लगाइए, लगन लगाइए, और किसी क्रिएटर के अंडर में जाके अच्छे से सीखिए. तो फिर आपकी जय विजय होनी
1: क्या बात है हेमंत, मतलब मैं सच में ऐसे बोलूंगी कि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रहेगी टू ऑल द बिगिनर्स, और जो भी लोग हैं, जो मैं बोलूंगी कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है मोस्टली, जो सोच रहे कि मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि कॉल सेंटर में जॉब करना, एक कोई कपड़े के शॉप में जॉब करना और आज बड़े बड़े ब्रांड के लिए शूट करना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड वो आपने अचीव किया है अपने पैशन को फॉलो करके. सो या हैट्स ऑफ एंड वन सेकेंड कंग्रेचुलेशन, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. टीम को आप साथ में लेकर चल रहे हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, टीम को ऐसे ही आगे लेके जाओ. और जितने भी आपके, मैं सच में बोलूंगी कि मतलब आपके ये पूरे बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐसी बहुत सारी चीजें की है जिससे लोगों का कुछ अच्छा हुआ है. जैसे आपने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, सो ये अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, मैं बस ऐसे ही कहना चाहूंगी. एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट, आपने आपका बिजी शेड्यूल में से टाइम निकल कर आप यहाँ पर आए. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू फॉर टेकिंग ऑल द कॉल अप्स. एंड आई जस्ट मेक वन, आई विल मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट. सो आचार्य एफएम के लिए, अगर इफ यू हैव गॉट एनी प्लान्स वेयर यू आर कमिंग अप एंड यू वांट टू पुश टैलेंट्स एंड यू वांट टू एलिवेट टैलेंट्स फ्रॉम चेंबूर, सो प्राउड चेंबूरकर इज ऑलवेज अप विद यू.
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू.
0: जय श्री राम.
1: सो आई नो आपको ये आज का जो इंटरव्यू और जो भी हमारा टॉक शो है बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप जो भी आपका फीडबैक है हमें प्लीज डेफिनेटली जरूर आपके कमेंट्स और जो भी है आप सब हमें डेफिनेटली बताएगा. और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इज 9167993999. फिलहाल अभी आज के लिए यही.

0: नाम सुपर्णा कश्यप है और मेरे साथ आज है मिस मुक्ता जोशी। हम दोनों भी काउंसलर्स हैं। आज हम लोग एंटी बुलिंग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से रफली 20% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एक्सपीरियंस बुलिंग। एंड बुलिंग अलग अलग तरीके का हो सकता है, वर्बल बुलिंग हो सकता है, फिजिकल बुलिंग हो सकता है, और आजकल जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो साइबर बुलिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो होती है आजकल। तो मेरा पहला क्वेश्चन मुक्ता मैम आपसे ये है कि बुलिंग इंडियन कॉलेज में किस प्रकार में दिखाई देता है?
1: थैंक यू इंट्रोड्यूस करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बुलिंग शब्द सुन के हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चीज होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है। वैसे तो वो बड़ी है बट वो कभी कभी दिखने में उतनी बड़ी नहीं होती। जैसे हमने देखा है 3 इडियट्स मूवी देखा है या मुन्ना भाई MBBS देखा है, उसमें कैसे हमें रैगिंग दिखाई जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वैसा होता है तो उसको ही हम बुलिंग बोल सकते हैं, बट वो जरूरी नहीं है। बुलिंग एकदम छोटी छोटी चीजों में भी देखी जा सकती है, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, राइट, इसको भी हम बुलिंग के अंतर्गत ही लाते हैं। तो कोई किसी का बोलने का तरीका होता है, किसी कोई कहाँ से आया हुआ है जिनका नेटिव विलेज कहीं और है, उसका मजाक उड़ाना, कास्ट का मजाक उड़ाना, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके का खाना खाते हैं, उसका मजाक उड़ाना, ये बेसिक चीजें हैं जो बुलिंग के अंतर्गत आती है। हमें ऐसा लगता है ये तो क्या है, ये तो एकदम छोटी चीज है, एक दूसरे को चिढ़ाना तो नॉर्मल है, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये चीज जब बार बार होती है, हमें लगता है हम अकेले हैं जो ये कर रहे हैं, बट एक इंसान के लाइफ में बहुत लोग होते हैं जो सेम चीज उसके लिए करते हो, तो उसकी वजह से वो ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो हम उसमें से सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो हिस्सा भी बहुत बड़ा बन सकता है। उसके अलावा मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ दूसरे के बारे में गॉसिप करना, किसी को ग्रुप से अलग करना, उनको आइसोलेशन में रखना, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में उनको पार्ट नहीं लेना, जानबूझ के उनको नहीं मुझे ये इंसान नहीं चाहिए मेरे ग्रुप में ऐसे बोलना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की एक्टिंग करना, ये जो सारी चीजें हैं एकदम सिंपल एग्जांपल्स है बुलिंग के जो हो सकते हैं। इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप किसी को चिढ़ा रहे हो, जो हमें लगता है हम चिढ़ा रहे हैं, बट वो भी बुलिंग के अंतर्गत आता है, वो भी साइबर बुलिंग के अंडर आता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमें दिखते हैं यूजुअली कॉलेजेस में। हमें लगता है सब हंसी मजाक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बुलिंग कभी भी ना मजाक नहीं होता। मतलब वो हमारे लिए शायद मजाक होता है जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे, लेकिन जिसका मजाक उड़ रहा है उसके लिए वो कभी भी मजाक नहीं होता। हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हो सकता है ऐसे। और दूसरी चीज ऐसे है कि बुलिंग तब होता है जब कोई अपनी पावर दिखाना चाहता है किसी और को, सामने वाले को, अपनी अथॉरिटी जताना चाहता है, मैं कैसे सबसे बेहतर हूँ, मैं कैसे सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इन चीजों को दिखाने के लिए ज्यादातर बुलिंग देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि ये बुलिंग सिर्फ फ्रेंड्स में हो या पियर्स में हो, ये बुलिंग कभी कभी ऐसा भी होता है हायर अथॉरिटी के लोग भी लोअर अथॉरिटी के लोगों पे बुलिंग कर सकते हैं। तो बुलिंग अलग अलग तरीके का होता है जैसा मैंने अभी बताया। हमारे इंटेंशंस क्या है उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे एक्शंस क्या है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। तो वही मुझे लगता है कि ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए ये हमें दिखता है अक्सर कॉलेज में होते हुए।
0: जैसे कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताया कि रैगिंग जो एक बहुत हाई लेवल में होता है वर्सेस जो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो रोज होती है जिनको हम बहुत इजीली अनदेखा भी कर देते हैं, तो ये सारी चीजें भी बुलिंग के अंडर आती है। और जब कोई एक्सपीरियंस करता है बुलिंग तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है?
1: कई बार मैंने ना लोगों को बोलते हुए सुना है, बच्चों को बोलते हुए सुना है कि ये ना ज्यादा ही दिल पे ले लेती है, या फिर ये ना ओवर थिंक करता है, ये क्या छोटी सी बात है, इसके बारे में क्या इतना सोचना है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बुलिंग, अभी हम बात कर ही रहे हैं तो हम काउंसलर्स हैं, अब हम बुलिंग के बारे में बात क्यों ही कर रहे हैं, तो ये सवाल मुझे काफी अप्रोप्रिएट लगता है कि उसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। और हाँ, जरूर होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुलिंग मतलब क्या है, एक छोटा सा चिढ़ाना हो गया, वो एक बैड मेमोरी है शायद किसी के लिए, बट ये कभी भी ना सिर्फ बैड मेमोरी नहीं रहती है, वो दिल पे लगता है. और जैसे मैंने बोला कि जब वो बार बार होते रहता है तो उसका बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे, किसी के भी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है. एंग्जाइटी होना, बहुत ज्यादा सोचते रहना, इतना सोचना, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज करना, अपनी आइडेंटिटी को जिस तरीके से लोग हमें पुकारते हैं उस तरीके से बनाना. अगर कोई किसी को यार तू तो बहुत पतला है बोलते रहेगा, तो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है कि यार मैं बहुत पतला हूँ, मैं मतलब मेरे में कुछ नहीं है, वही मैं हूँ, राइट. तो वो आइडेंटिटी बन जाना. ये भी देखा गया है कि एकेडमिक्स में, पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस उसकी वजह से लूज होने के बहुत चांसेस होते हैं. क्योंकि ऑल्दो वो एक छोटी सी चीज लोगों को लगती है, वो इस इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है. बहुत बच्चों ने हमें ऐसा अभी तक बताया है कि वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग उनके बात करने के तरीके पे हंसेंगे. आप इमेजिन करो कि कोई इंसान जिसको सब पता है, इंटेलिजेंट है, बट वो क्लास में बात क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है. उससे भी बहुत बड़ी बात ये होती है कि लोगों को, चलो अभी उनको पता है कि उनका उनको बुरा लग रहा है, उनके साथ बुलिंग हो रहा है, बट उसके बारे में बात करने में भी उनको शर्म आती है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं है मेरे बारे में. तो वो ना किसी से बात कर पाते हैं, ना खुल पाते हैं उसके बारे में, कुछ शेयर कर पाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर रह के घुटन जैसे होने का भी चांसेस होता है. इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर आपको बुलिंग से आपके ऊपर कोई परिणाम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो. बुलिंग इज अ रॉन्ग थिंग, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है. आप इंसान हो और हर इंसान को बुलिंग की वजह से तकलीफ होने के चांसेस है.
0: तो एक जो चीज आपने बताई कि जब एक कमेंट बार बार किसी को बोला जाता है, उनकी पूरी पहचान ही उस एक चीज में रह जाती है, बाकी अचीवमेंट्स भी कुछ रहेगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पाते. और ये फिर बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है इन चीजों से कोप करना, कि कैसे खुद को संभाले, कैसे खुद को सपोर्ट दे, कैसे हम इस चीज से उभर के आए. तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम खुद को सपोर्ट करें इस सिचुएशन में?
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मुझे लगता है कि हमें ऑफकोर्स किसी भी इंसान को, हमारे कम्युनिटी का, हमारे आसपास के लोगों का सपोर्ट जरूरी होता है. तो जब मैं ये सवाल का जवाब दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें ही उस पर काम करना है, लेकिन अगर हमारे साथ बुलिंग हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे ख्याल रखने के लिए, वो मैं यहाँ पे जरूर बता सकती हूँ. तो पहली चीज तो ये है कि ये आपकी गलती नहीं है. कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान को बुली किया जाता है उनको लगता है मैंने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है. तो ये समझिए कि कोई भी बुलिंग डिजर्व नहीं करता, ना आप ना कोई और, राइट. और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सैड, एंग्री, कंफ्यूज फील कर रहे हो तो वो भी बहुत नॉर्मल है. अपने इमोशंस को रोकिए मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये तो मजाक है, तुम्हें इतना क्या हो रहा है, इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है, और हमें लगता है कि हाँ हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और हम अपने गुस्से को अंदर दबा देते हैं, और वो इमोशंस दबाने की वजह से और ज्यादा अंत में उभर के आते हैं. दूसरी चीज ये है कि इसके बारे में किसी से बात करो, जो भी, जिस इंसान को भी आप भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करो. आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपका कोई कजिन हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं. जरूरी नहीं है हमेशा आपको किसी प्रोफेशनल काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास ही आना है, आप किसी से भी बात कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में बात जरूर करो. आपका जो इमोशनल एक आपको लोड फील होता है ना उसकी वजह से, वो थोड़ा कम होने में उससे मदद हो सकती है. तीसरी जो चीज है, अगर आप आपके साथ होने वाले बुलिंग को डॉक्यूमेंट करते हो, उसको लिख के रखते हो कि ये कब हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था, किसने किया था, सिचुएशन क्या था। तो अगर आप कभी आगे जाके कंप्लेंट करना चाहते हो, इसमें ये चीज बहुत काम आ सकती है कि आप उसको कंप्लेंट भी आगे रेज कर सकते हो। हर कॉलेज में कंप्लेंट रेज करने का तरीका होता है, कहीं भी देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो आप उस पर कंप्लेंट रेज कर सकते हो। फाइनली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि अपने आप को डिफेंड करने का एक तरीका ढूंढना। मुझे पता है कि ये बहुत आसान नहीं है, और जब कोई ऐसी चीज हो रही होती है, स्पेशली आपके साथ बुलिंग हो रहा होता है, तो उस समय हम अपने आप को डिफेंड करना, उतनी ताकत लाना उतना मुश्किल है। लेकिन अगर आप में वो ताकत आती है, आप ला पाते हो, तो जरूर अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। सामने वाले को सीधे बताइए कि मैं इस चीज से कंफर्टेबल नहीं हूं। मुझे पता है कि उसके परिणाम हो सकते हैं, लेकिन वो परिणाम अगर आपको लगता है कि आप भुगतने के लिए ठीक है आपके लिए, तो आप ये जरूर कीजिए। सामने वाले को ये बताइए कि ये ठीक नहीं है, मैं ये सह नहीं सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत दुखद है, ये मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बताने से एटलीस्ट ये जायज होता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप इस चीज को रोक पाओ। और आगे जाके अगर कोई बोलता है कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने ऐसा किया, तो तब आपके पास एटलीस्ट ये है कि आपने बोला है लेकिन फिर भी वो रुके नहीं है। फाइनली अगर आपके कॉलेज, स्कूल, कैंपस में कोई सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे कुछ कॉलेजेस में एंटी बुलिंग कमिटीज होते हैं, एंटी रैगिंग कमिटीज होते हैं, तो ऐसे कमिटीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अपने लोग ढूंढो जो अपनी बातें सुनते हैं, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड फाइनली अपने मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि आप कुछ भी नहीं कर पाए, हो सकता है ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है, तो एक कुछ भी नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट हमारा ख्याल रखने के लिए एटलीस्ट हम एक जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। कोई लोग वॉक के लिए जाते हैं, उनका मन शांत होता है। कोई लोग जर्नल करते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं अपने ख्याल, अपने इमोशंस अलग निकालते हैं बाहर। मेडिटेशन करना, गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, उनके पास भी जाने का एक ऑप्शन हो सकता है। और ये ध्यान में रखिए कि स्ट्रगल करने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो। हर कोई जिंदगी में स्ट्रगल करता है, लेकिन आप जब हेल्प मांगते हो या किसी से हेल्प लेते हो, वो आपको स्ट्रांग बनाता है।

0: बिल्कुल हेल्प लेने में हिचकिचाना नहीं है.
1: थैंक यू मैम, ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आगे रखी कि हेल्प मांगने से आपको कोई कमज़ोर नहीं बनाता है. तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है जो हम आज पहुंचाना भी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए. और एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि सपोर्ट का जिम्मेदारी उस इंसान पे नहीं होना चाहिए जो बुली हो रहा है. ये एक कम्युनिटी जैसी एनवायरनमेंट हमें तैयार करनी है कि जहाँ हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर सके. तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं कि हम किसी का सपोर्ट करें जो बुली हो रहा है, हम उसको कैसे सपोर्ट करें.
0: ओके. कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैं तो एक इंसान हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ. और यही जो सोच है वो हमें कुछ करने से रोकती है. तो पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा स्टेप लेने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप छोटा सा भी स्टेप लेते हो तो वो भी एक सपोर्ट के तरीके से एक इंसान के लिए बहुत बड़ा हो सकता है. तो जब बुलिंग हो रहा है तब जाके झगड़ा करना, इतने बड़े स्टेप्स लेने की भी जरूरत नहीं है. मैं तो कहती हूँ कि बस अगर कोई बुली हो रहा है तो बाद में जाके उनको, उनसे बात करना, उनको बताना कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं जानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सही नहीं हुआ. इतनी चीजें सिर्फ उनको बताना और उनको ये महसूस कराना कि उनके साथ भी कोई है जो उनको सपोर्ट करता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है. प्राइवेटली उनके साथ जाके एक बार चेक इन करना कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ, ये चीजें पूछना, इनसे भी बहुत फर्क पड़ सकता है. अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं और उनका उसमें कोई ओपिनियन है, वो आपको कहानी बता रहे हैं कि आप उनके साथ क्या हुआ, तो उसको बिना जज किए सुनिए. उससे क्या होता है कि हम ना थोड़ा क्या, हमें ऐसा लगता है कि हमें सही या गलत में जाना चाहिए, सच या झूठ में जाना चाहिए, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होती है. वो इंसान को आप सिर्फ सुनोगे एकदम शांत मन से बिना किसी जजमेंट के, तो वो भी उनके लिए बहुत सपोर्टिव हो सकता है. अगर आप इतना कर सकते हैं कि अगर कोई बुली कर रहा है और उस बुली को आप साइलेंट कर सकते हैं, वही के वही बोल सकते हैं कि ये सही नहीं कर रहे हो, या फिर यार दूसरों का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है, ऐसे अगर आप उन बुली को भी बता सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बोला कि आप जाके एकदम झगड़ा शुरू कर दो. सिर्फ वो सिचुएशन जब हो रही होती है उसको बीच में तोड़ना, उसको इंटरप्ट करना, उतना ही अगर आप कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुली हो रहा है तो उनको बोलना कि अरे छोड़ना, चल मेरे साथ चल, ऐसे बोल के उनको वहां से लेके जाना ताकि वो और आगे बुली ना हो, वो भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है. ये समझना भी जरूरी है कि जो बुली कर रहे हैं वो भी कभी कभी अपने ही खुद के मेंटल हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे होते हैं. उनको भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे हैं. तो कई बार कन्फ्रंटेशन के जगह वो सिचुएशन को काम करना ज्यादा असर करता है. तो इस ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम या हम कोई भी अपने आसपास अगर बुलिंग हो रहा है तो उसको सपोर्ट कर सकता है.
1: एक बस जो एक वो फीलिंग होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, ये एक चीज ही बहुत ज्यादा ताकत दे सकती है हमें किसी भी चीज से गुजरने के लिए.
0: बिल्कुल.
1: और इसी के चलते हम कॉलेज में एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सपोर्टिव कल्चर बिल्ड करें जहाँ पे बुलिंग को हम नो ऐसा हम कर सके कि नहीं ये करना ही नहीं, और हम एक कॉलेज के लिए एक सपोर्टिव कम्युनिटी कैसे बना सकते हैं.
0: इमेजिन करो यार कि एक कॉलेज जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी कम्युनिटी बनी है जहाँ बुलिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है. तो जब मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ तो मुझे, और मैं बोलती हूँ कि ये एकदम आइडियल है, शायद वहां तक पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, कब पहुंचेंगे पता नहीं, लेकिन वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना हम अभी से शुरू कर सकते हैं. तो वो कैसे कर सकते हैं, बेसिक एकदम छोटी छोटी चीजों से, जैसे क्लास में आप किसी को मिलते हो तो उनको हेलो बोलना, आप कॉरिडोर में चल रहे हो तो कोई भी सामने दिखता है, आंखों में आंखें मिलती है तो एक दूसरे को हेलो बोलना, ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, टीचर्स को ग्रीट करना, टीचर्स ने स्टूडेंट्स को ग्रीट करना, राइट कोई नया स्टूडेंट आया है कॉलेज में और पहले उनके कोई दोस्त नहीं है तो उनके साथ जाके बैठना, उनको इंक्लूडेड फील कराना, रादर देन कोई और आके उनको बुली करना शुरू करे उसके पहले ही हम जाके उनको इंक्लूडेड फील करा सकते हैं। तीसरा है कि कोई अगर अपने आप को सबके सामने लाके कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, किसी चीज में भाग ले रहा है तो उनको अप्रिशिएट करना, वो भी एक बहुत, हमें लगता है कि वो ये कौन करता है ऐसे, पर वो करना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है उस इंसान के लिए। किसी को कोई पढ़ाई का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उनको वो समझाना, ऐसे छोटे छोटे जो जेस्टर्स होते हैं उससे भी बहुत बड़े परिणाम होते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि मेरे एक की वजह से क्या होगा, हमारे एक की वजह से और लोग इंस्पायर होके सिमिलर बिहेवियर ला सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम अपने कॉलेज के लिए छोटी छोटी चीजों के थ्रू ला सकते हैं।
1: और जैसे आपने बोला ये काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज के इसमें सोचते हैं क्या ही हो जाएगा करने से, क्या फर्क पड़ेगा इससे, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही है जो आगे जाके फर्क लाएंगे। सो एनी फाइनल थॉट्स मैम टू कंक्लूड दिस?
0: मुझे लगता है कि कोई भी छोटा महसूस करे ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि अगर हर किसी के पास बदलाव लाने की पावर है तो हम उस पावर को यूज करेंगे। तो काइंड रहिए एक दूसरे के साथ, चेंज आ सकता है इसके लिए आप रेडी रहिए, उसके उसमें बिलीव कीजिए। कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलिए। कोई अगर स्ट्रगल करते हुए आपको दिख रहा है तो उनको मदद का हाथ बढ़ाइए। इसी से हम अपनी कम्युनिटी एक सेफ कम्युनिटी बना सकते हैं जहां पे इंसान आराम से सांस ले सकता है और एंजॉय कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, तो बाकी की चीजें उसके बीच में ना आए। हर कोई मदद और रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। तो यही मेरे लास्ट थॉट रहेंगे।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू समय निकाल के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने के लिए, एंड थैंक यू आचार्य 90 FM हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए।
0: और अगर कोई

आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे मेरे अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छिप जाऊं ऐसे मेरे अंदाज नहीं, क्योंकि सूरज से दमकता ये स्वाद का जायका किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। की हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? वही आप सब आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं, और दोस्तों का ख्याल रखना यही हमारा मकसद है। वैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलकर हमें बेहद खुशी ही होती है। भाई आज हमारे स्वाद का जायका इस शो पर हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की एक फेमस वाली चटनी। खट्टी मीठी और जरा सी तीखी टेस्ट वाली ये चटनी कच्चे आम से बनती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में बनने वाली ट्रेडिशनल चटनी है। गर्मियों के सीजन में इसे खाना कंपलसरी माना जाता है। जोक सपाट, आम की इस चटनी को सिर्फ 5-10 मिनट्स में एकदम झटपट बनाया जा सकता है। लंच या फिर डिनर के साथ इसे खाना मतलब स्वाद का जायका निभाने जैसा ही है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में खास तौर पर इसे बनाया जाता है। कैरीचा तप्पू इस नाम से फेमस इस रेसिपी को चटनी भी कहते हैं और अचार भी कहते हैं। कैरीचा तप्पू इस रेसिपी को खिसवंती नाम से भी जाना जाता है। खिसवंती मीन्स मराठी भाषा में कद्दूकस करना है। वैसे कैरीचा तप्पू ये रेसिपी 5 स्वादों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे, तो गौर से सुनिए। इसमें है कच्चे आम का खट्टापन, गुड़ की मिठास, मिर्ची का तीखापन, मेथी दाना की कड़वाहट और नमक का नमकीन स्वाद। हो गए ना 5 स्वाद। कुछ महाराष्ट्रियन लोग इसमें सिंगदाना पाउडर और अचार का मसाला भी ऐड करते हैं। वैसे कुछ लोग इस तप्पू से पोहा भी बना लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खाने की कोई भी चीज अगर फ्रेश हो तो ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, बजाय इसके कि उसे कई दिनों तक जमा करके रखा जाए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे छोटे ऑडियंस बच्चा पार्टी इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वो कैसे, कच्चे आमों को कद्दूकस करने में आपकी हेल्प चलेगी। तो हो जाइए तैयार कैरीचा तप्पू इस महाराष्ट्रीयन रेसिपी को बनाने। कैरीचा तप्पू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड रॉ मैंगो 2 कप मतलब कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, ब्राउन गुड़ 1 कप, नमक 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डार्क रेड होती है और उसमें कम तीखापन होता है। फिर हमें चाहिए तेल 1/2 कप, राई 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, मेथी दाना 1/2 चम्मच। अब हम कैरीचा तप्पू

बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले ग्रेटेड रॉ मैंगो को ब्राउन गुड़, नमक और मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को 5-10 मिनट के लिए साइड में रखिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई डाले और उसे चटकने दे, मोहरी तड़तड़ू दे चांगली। फिर उसमें मेथी दाना डालिए, अब हींग का खुशबूदार स्वाद भी ऐड कीजिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए। इस तड़के को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। याद रहे कि हमें इसे गर्म यूज नहीं करना। लगभग 5 मिनट के बाद उसे कैरी के मैरिनेट किए हुए मिश्रण पर डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर गरम तड़के को तक्कू पर डाला तो वो खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि तड़का ठंडा करके ही यूज करें। एक और टिप, अगर कैरी ज्यादा खट्टी है तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और हमेशा वाली खास टिप, खट्टी चीजों को कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए। मेटल में खट्टी चीजें स्टोर करने से मेटल की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे कैरी का ये तक्कू आप 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे रोटी पर फैलाकर रोटी का रोल बनाइए और अपनी छोटी भूख को इंस्टेंट जुगाड़ से मिटाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि कच्चे आम में कितने अच्छे गुण होते हैं? गर्मियों के सीजन में कच्चा आम खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कैरी ये एक सुपर फूड है। सही मात्रा में कैरी खाना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे कच्चे आम को नमक लगाकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। 90s की जनरेशन को ये बात अभी तक याद होगी। वही हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक अंकल बेर, आंवला, इमली, हरी सौंफ और कच्चे आम के पतले टुकड़े बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ही रियल सुपर फूड है। सब बच्चे तो बस एज अ टाइम पास इन चीजों को खाते रहते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शेयर भी करते थे। खाना शेयर करने से बच्चों की दोस्ती एकदम पक्की होती थी। वैसे आपका फेवरेट सुपर फूड कौन सा है? इस सुपर फूड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कैरी नाम का सुपर फूड। अभी अभी एक सुपर फूड खाया, नाम है जिसका कैरी। इसके अनोखे स्वाद ने गर्मी को बनाया बेरी। कैरी के टुकड़ों को पहले लगाओ नमक, खाकर ऐसी कैरी चेहरे पर आए चमक। कैरी को खाकर भगाओ तुम हीट, स्वाद है अनोखा जैसे पंछी की ट्वीट। आम के पेड़ पर सुर लगाती है कोयल, इसकी मीठी आवाज से मेरा मन हुआ घायल। कोयल भी जानती है कि आम है सुपर फूड। इतने गुणों से बनी है कैरी हमारी फेवरेट रॉबिनहुड। हर सीजन में आते हैं जायकेदार फल, और हमारी हेल्थ को फिट रखना यही है बीमारी का हल। देसी सुपर फूड से बढ़ाओ अपनी ताकत, अब तैयार है हम दुश्मनों की आएगी आफत। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। वैसे समर वेकेशन मोड अब ऑन हो गया है और हमारे नन्हे दोस्त अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेकरार है। तो पेश है हमारे स्पेशल मिकी एंड मिनी माउस फ्रेंड्स के लिए एक नॉन फायर रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाना है एकदम ही आसान। एक्चुअली ये चॉकलेट के लड्डू टाइप ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी है और इसे बनाकर हमारे छोटे शेफ जरूर खुश होंगे। भाई हमें भी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के चेहरे की स्माइल देखने का इंतजार है, तो देर किस बात की। चलिए अब हम सुनते हैं किड्स स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मारी बिस्किट्स 15 से 20, कंडेंस मिल्क 1 कटोरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 5-6 चम्मच, रोस्टेड या पफ्ड राजगीरा 2 चम्मच, अखरोट मींस वॉलनट्स 10-12, छोटे छोटे स्ट्रॉज 6, घी 1 चम्मच। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ RJ भारतीय सीमा। अब सुनते हैं इसे बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मारी बिस्किट्स को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बनाइए। एक बड़े से बोल में मारी बिस्किट्स का चूरा और कंडेंस मिल्क को मिक्स कीजिए। इसमें कोको पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आप चम्मच यूज कीजिए। फिर इसमें वॉलनट्स के बारीक टुकड़े डालिए। आप छुरी की मदद से वॉलनट्स के टुकड़े कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हाथ से भी कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 चम्मच वॉलनट्स के टुकड़े आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगाइए, फिर तैयार मिश्रण के नींबू साइज के बॉल्स बनाइए। अब आप अपने घी वाले हाथों से उसके लड्डू बनाना शुरू कीजिए। सारे लड्डुओं को आप एक साइड में रख दीजिए। अब एक प्लेट में बचे हुए वॉलनट्स मींस अखरोट के टुकड़ों को डालिए। फिर हर लड्डू को उस वॉलनट वाली प्लेट में रोल कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, लड्डू के ऊपर वॉलनट का एक लेयर बनेगा। जब सारे लड्डू वॉलनट लेयर के बन जाए तब हर लड्डू में एक एक छोटा स्ट्रॉ अंदर डालिए। ऐसा करने से लड्डू को लॉलीपॉप वाला लुक मिलेगा। अब इन सारे लड्डुओं को एक सुंदर सी प्लेट में अरेंज कीजिए। इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर रोस्टेड राजगीरा को स्प्रिंकल कीजिए। इस तरह से आपके चोको वॉलनट पॉप्स अब रेडी हो गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को स्वीटनेस से भर दीजिए।

पलके बिछा के स्वागत में खड़े हैं हम। आइए, आपके आने से रोशन है हर पल। खुशियों का कारवां साथ लाई हूँ, स्वाद के जायके की बहार लाई हूँ। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केम छो भाई लोग, सब मजा मा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब आचार्य 90 FM के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। वैसे आप सबने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो अभी तुरंत हमारे दोस्ती वाले आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्ती को कन्फर्म कीजिए। अब चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंस्टेंट रेसिपीज जिन्हें झटपट तरीके से बनाकर फटाफट खाया जाता है। मुझ जैसे नौ सीखिए कुक के लिए ये एकदम आसान टाइप की रेसिपी है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो एक फेमस इंडियन स्टार्टर है और इसका नाम है मसाला पापड़। छोटी भूख या फिर एज अ स्टार्टर आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मूंग या उड़द दाल पापड़ 2, तेल 2 चम्मच, टमाटर के टुकड़े 4 चम्मच, प्याज के टुकड़े 4 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मीन्स कोतमीर 2 चम्मच, नींबू 1, नमक 2 चुटकी, चाट मसाला 1 चम्मच और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं उस खाने में उतरने वाली है। अब हम मसाला पापड़ बनाने की आसान सी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पापड़ को सेक लीजिए। ऐसा करने से ये पापड़ ना ही एकदम ड्राई और ना ही एकदम ऑयली होंगे। हर पापड़ को एक सेपरेट प्लेट में रखिए। फिर एक कटोरी में टमाटर और प्याज के टुकड़ों को डालिए। उसमें नमक और चाट मसाला मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को भुने हुए पापड़ पर अच्छे से फैलाइए। फिर उस पर नींबू निचोड़िए। फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर मीन्स कोतमीर से गार्निश कीजिए। इस तरह से आपका मसाला पापड़ हो गया है तैयार और बच्चा पार्टी इस मसाला पापड़ को खाने के लिए हो रही है बेकरार। तो भाई देर किस बात की, मौका भी है और दस्तूर भी है, अब तो मसाला पापड़ बनाना ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मसाला पापड़ को आप दाल चावल, सब्जी रोटी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। पैकेट वाले चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम होममेड मसाला पापड़ खाएं, क्योंकि होममेड खाने में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही होता है। वैसे भी इन गर्मियों के दिनों में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका इलाज है मसाला पापड़। इस पापड़ की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है प्यारे प्यारे पापड़। सबको प्यारे लगते हैं खर्रम खुर्रम पापड़, उसका एक निवाला लेने वाला दोबारा मांगेगा आकर। इसे बनाने लगते हैं चटपटे मसाले और दाल, पापड़ से ही सजता है हर हिंदुस्तानी थाल। चाहे तलो या भूनो क्रिस्पी इसकी आवाज, खाने का जायका बढ़ाता इसका अनोखा सा स्वाद। पापड़ हमारी परंपरा का है महत्वपूर्ण व्यंजन, हर रोज खाओ एक फिर भी बढ़ेगा नहीं वजन। हमारा पारंपरिक खाना नहीं है जंक फूड, स्वाद है इतना अच्छा कि सुधर देगा बिगड़ा मूड। दोबारा से अपनाएं हम हमारी भारतीय संस्कृति, देसी खाना खाकर हम पाए अच्छी प्रकृति। हमारे पारंपरिक व्यंजन नहीं किसी से कम, सारे विश्व में भारत का डंका, यही है हमारा प्रण। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।

वैसे पापड़ की तारीफ तो हमने सुन ली, अब हम चावल की एक सिंपल सी रेसिपी सुनते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले भोगी का त्योहार होता है। भोगी के दिन मेरे पड़ोस की एक आंटी जो कर्नाटक के बेलगांव से हैं, वो इसे बनाती थी। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल कूलिंग रेसिपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है दही कांदा चावल। इसे बनाना आसान तो है ही, लेकिन इसे एंजॉय करना एकदम इंटरेस्टिंग है। दही कांदा चावल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: जीरा डालकर पकाए हुए चावल 2 कटोरी। यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे बासमती, कोलम या उकड़ा चावल। बस उन्हें अच्छे से पकाकर रूम टेम्परेचर पर लाइए। फिर हमें चाहिए ताजा दही 1 कटोरी, कोथमीर बारीक काटकर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मीन्स हरी प्याज बारीक काटकर 1 कटोरी। दैट्स इट। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पके हुए चावल, दही, हरी प्याज, नमक, इन सबको अपने हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स करने से ये अच्छे से मिक्स होता है। फिर एक सुंदर सी प्लेट में इस चावल को परोसिए और बारीक कटी हुई कोथमीर से इसे गार्निश कीजिए। है ना झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी। दही चावल और प्याज को एक साथ खाने से पेट में ठंडक सी छा जाती है और ये पचने में भी आसान है। इसे खाने से एसिडिटी कंट्रोल होती है और पेट भरने की फीलिंग भी मिलती है। हर रोज सुबह दही चावल का नाश्ता आप खाकर ट्राई तो कीजिए, फिर दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। ताजा दही को यूज करना बेटर ऑप्शन है। खट्टा दही खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर के वक्त छाछ पीनी चाहिए और शाम को दूध पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे मेरे पड़ोस की आंटी भोगी की थाली में दही चावल प्याज के साथ गाजर का कचुम्बर भी देती थी। गाजर के कचुम्बर का टेस्ट भी सुपर्ब है और खाने की थाली जितनी ज्यादा कलरफुल दिखती हो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो पेश है हमारी अगली कलरफुल रेसिपी जिसका नाम है गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कद्दूकस किए हुए गाजर मींस ग्रेटेड कैरेट्स 2 कटोरी, भुने हुए सिंगदाने का दरदरा पाउडर 4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, नींबू का रस 1 चम्मच, कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम गाजर का कचुम्बर बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक बर्तन में कद्दूकस किए हुए गाजर, सिंगदाना पाउडर, नमक, शक्कर और थोड़ा नींबू का रस सब एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक कांच की कटोरी में इस इंस्टेंट कचुम्बर को सर्व कीजिए। डेकोरेशन के लिए उस पर थोड़ी कोथमीर डालिए। दैट्स इट। गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े से घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर इस पर डाल सकते हैं। इस तरह गाजर के टेस्टी कचुम्बर को बनाइए और बेझिझक इसका लुत्फ उठाइए। वैसे गाजर का हलवा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गाजर का कचुम्बर भी कुछ कम नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो हम भूल से गए हैं और आचार्य 90 FM के स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखा जाए तो ऐसी क्विक रेसिपीज से पेट भरता ही है, साथ ही कुकिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ज्यादा खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना, मतलब बासी बनाकर खाना, ये हमारी खाद्य संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा खाना बने तो उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और मिल बांटकर खाइए। इससे आपसी दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे फेमस लेडी शेफ तरला दलाल जी की। खाना पकाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ईयर 2007 में तरला जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेजिटेरियन रेसिपीज से रिलेटेड 170 से ज्यादा कुक बुक तरला जी ने लिखी और वेजिटेरियन डेलिकेसीज को कई सारे घरों तक पहुंचाया। तरला जी ने शाकाहारी व्यंजनों को एक नया नजरिया देकर ट्रेडिशनल खान पान को मॉडर्न टच दिया है। ईयर 2023 में उन पर तरला इस नाम की एक बायोपिक फिल्म भी आई थी। हमें नाज है, भारतीय शाकाहारी पाक कला की जूलिया चाइल्ड मींस शेफ तरला दलाल जी पर, जिन्होंने कुकिंग को एज अ मीडियम यूज करके सारी दुनिया में शाकाहार को फेमस किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक फेमस पतले और क्रिस्पी ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में। ये नाश्ता मेनली गेहूं का आटा, तेल और मसालों से बनता है। ये लाइट वेट होने की वजह से एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। इसे मेनली ट्रैवलिंग के दौरान खाना प्रेफर किया जाता है। वैसे हमारे गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों में ये काफी फेमस है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण इसे वेट कंट्रोल करने वाला खाना इस रूप में पहचाना जाता। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट खाकरा इस व्यंजन के बारे में। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। हमारे नन्हे ऑडियंस फिलहाल समर वेकेशन मोड पर है, राइट? तो क्यों ना हम इनके लिए ही खाकरा से बनने वाली कोई चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएं? इटालियन पिज्जा तो सबको मालूम ही है कि नहीं? तो आज हम खाकरा यूज करके इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा बनाते हैं। खाकरा को एज अ बेस यूज करके उस पर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज लगाकर हम पिज्जा को भारतीय रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी स्पेशल खाकरा पिज्जा बनाने के लिए। खाकरा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: प्लेन या मसाला खाकरा 4, टोमेटो सॉस 4 बड़े चम्मच, ग्रेटेड चीज आइदर मोजरेला और प्रोसेस्ड, प्याज, शिमला मिर्च, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स सब मिलाकर 1 कप। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट कर यूज कीजिए।
फिर हमें चाहिए चाट मसाला, ओरिगानो सीड्स, चिली फ्लेक्स, सब स्वादानुसार। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच ओरिगानो सीड्स और एक चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए मक्खन या घी, एक चम्मच। अब हम खाकरा पिज्जा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस को तैयार करना है, इसलिए खाकरे के ऊपर टोमेटो सॉस की एक पतली लेयर लगाइए। अब स्वीट कॉर्न के दाने, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को उस खाकरे पर इक्वली फैलाइए। अब इस पर बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालिए। आखिर में चाट मसाला, ओरेगानो सीड्स और चिली फ्लेक्स को इस पिज्जा पर छिड़के। फिर एक नॉन स्टिक पैन पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाइए। अब तैयार पिज्जा को ध्यान से उठाकर एकदम आराम से उस पैन में रख दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकाइए। लगभग 2-3 मिनट के बाद पिज्जा के ऊपर का चीज मेल्ट होने लगेगा। फिर उसे एक सर्विंग प्लेट में संभाल कर निकालिए। इस तरह से होममेड और इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने बच्चा पार्टी है एकदम बेकरार। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों, झटपट खाकरा पिज्जा बनाइए और फटाफट से इसका लुफ्त उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे अगर आप चाहें तो इस पिज्जा पर बारीक कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और न्यूट्रिशियस बनेगा। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुकिंग करना हम सबको सीखना ही चाहिए। बच्चों को सॉलिड और लिक्विड पदार्थों में क्या फर्क है ये एक्सप्लेन करने के लिए किचन एक अच्छा मीडियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए चम्मच चलाना, छीलना, मिक्स करना, ऐसी एक्टिविटीज एकदम यूजफुल है। किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से छोटे बच्चे दूसरों के काम की सराहना करना सीखते हैं, क्योंकि खाना बनाने में लगने वाली मेहनत को बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज सीखने के लिए अन्न का सम्मान करना भी सीखेंगे। भाई, लेक्चर मेथड से बेहतर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है कि नहीं? इनफैक्ट कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से हमारे नन्हे ऑडियंस बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बल्कि खाना बनाना और औरों के साथ उसे शेयर करना, इस काम के लिए वो एक्साइटेड ही रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव की कहानी सुनाती हूँ। अज्ञातवास के समय महाबली भीम वल्लभ इस नाम को धारण कर विराट नाम के एक राजा के किचन में एज अ कुक काम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा विराट के महल में पधारे। तब किचन में ज्यादा कुछ सब्जियां नहीं बची थी। तब गदाधारी भीम यानी वल्लभ ने जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी उन सब को मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसका नाम था अवियल। और इस अवियल को खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य काफी खुश हुए। साउथ इंडिया, मेनली केरल राज्य में अवियल इस व्यंजन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। गदाधारी भीम जिनमें हजार हाथियों की शक्ति थी, वो खुद एक कुकिंग एक्सपर्ट थे। और खास बात ये है कि खाना बनाना और खूब खाना, इन दोनों कलाओं में भीम एक्सपर्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? खाने और खिलाने की इंटरेस्टिंग बातें तो चलती ही रहेंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए, वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं अच्छा NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने गदाधारी भीम की स्टोरी सुनी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खाना खाने वाले को खाना बनाना आए तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल डेवलप होती है। किचन में काम करना एक रूटीन वर्क होता है जो हमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासन सिखाता है। कुकिंग करते समय मसालों और टेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस रखना पड़ता है। ताजी सब्जियां हमें मेहनत से मिले रिजल्ट को दिखाती है, उसे देखकर हम भी प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जनाब इसीलिए तो किचन में एंट्री मारिए और कुकिंग की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। जो भी चीजें अवेलेबल है उन्हें इस्तेमाल करके जिसने खाना बनाना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी की कठिनाइयों को फेस करके जिंदगी जीना सीख लिया है कि नहीं। आप सुन रहे हैं आचार्य NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई घर का किचन मींस घर का दिल होता है। यहाँ पर बर्तनों की खनक और मसालों की महक हमें प्यार और पोषण से भरती है। इस रसोई घर की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मेरा रसोई घर एक जादुई कोना। घर के अंदर एक और घर, नाम है उसका रसोई घर। पूरे घर में जादुई नगरी बसती है सिर्फ यहीं पर। कढ़ाई है बीमार तो कुकर आगे आया, बजाकर सीटियां सारा टेंशन भगाया। पेट की आग बुझाता काला सा एक तवा, राई जीरे के छौंक से खुशबू बिखेरती हवा। किचन से ही पाती शक्ति, नाम है जिसका देह। घी की खुशबू से पाते हैं हम सब स्नेह। प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन चीजों का जब लगे तड़का, तब हींग की मनमोहक खुशबू से चंचल मन मेरा बहका। घर का ये कोना जीवन की हकीकत बतलाता, मेरा रसोई घर मुझे जिंदगी जीना सिखलाता। आप सुन रहे हैं आचार्य NITFM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। भाई टेस्टी खाना और आचार्य NITFM पर बजने वाला गाना ये तो सुपर हिट कॉम्बिनेशन है। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। स्वाद का जायका इस सफर पर हमें तजुर्बे तमाम मिले। मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिलना यही है जिंदगी का दस्तूर। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, इसमें मेरा क्या कसूर। आज के लिए बस इतना ही। हम वापस मिलेंगे हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

ऐसी मेरी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे मेरे अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छिप जाऊं ऐसे मेरे अंदाज नहीं, क्योंकि सूरज से दमकता ये स्वाद का जायका किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। की हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? भाई आप सब आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना यही हमारा मकसद है। वैसे आचार्य 90 FM के ऑडियंस से मिलकर हमें बेहद खुशी ही होती है। भाई आज हमारे स्वाद का जायका इस शो पर हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की एक फेमस वाली चटनी। खट्टी मीठी और जरा सी तीखी टेस्ट वाली ये चटनी कच्चे आम से बनती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र में बनने वाली ट्रेडिशनल चटनी है। गर्मियों के सीजन में इसे खाना कंपलसरी माना जाता है। जोक सपाट, आम की इस चटनी को सिर्फ 5-10 मिनट्स में एकदम झटपट बनाया जा सकता है। लंच या फिर डिनर के साथ इसे खाना मतलब स्वाद का जायका निभाने जैसा ही है। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन में खास तौर पर इसे बनाया जाता है। कैरीचा तप्पू इस नाम से फेमस इस रेसिपी को चटनी भी कहते हैं और अचार भी कहते हैं। कैरीचा तप्पू इस रेसिपी को खिसवंती नाम से भी जाना जाता है। खिसवंती मीन्स मराठी भाषा में कद्दूकस करना है। वैसे कैरीचा तप्पू ये रेसिपी 5 स्वादों का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे, तो गौर से सुनिए। इसमें है कच्चे आम का खट्टापन, गुड़ की मिठास, मिर्ची का तीखापन, मेथी दाना की कड़वाहट और नमक का नमकीन स्वाद। हो गए ना 5 स्वाद। कुछ महाराष्ट्रियन लोग इसमें सिंगदाना पाउडर और अचार का मसाला भी ऐड करते हैं। वैसे कुछ लोग इस तप्पू से पोहा भी बना लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो खाने की कोई भी चीज अगर फ्रेश हो तो ज्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है, बजाय इसके कि उसे कई दिनों तक जमा करके रखा जाए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे छोटे ऑडियंस बच्चा पार्टी इस रेसिपी को बनाने में थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वो कैसे, कच्चे आमों को कद्दूकस करने में आपकी हेल्प चलेगी। तो हो जाइए तैयार कैरीचा तप्पू इस महाराष्ट्रीयन रेसिपी को बनाने। कैरीचा तप्पू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, ग्रेटेड रॉ मैंगो 2 कप मतलब कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम, ब्राउन गुड़ 1 कप, नमक 2 चम्मच या स्वाद के अनुसार, ढेर सारा प्यार भी चाहिए क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च डार्क रेड होती है और उसमें कम तीखापन होता है। फिर हमें चाहिए तेल 1/2 कप, राई 1 चम्मच, हींग 2 चुटकी, मेथी दाना 1/2 चम्मच। अब हम कैरीचा तप्पू बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले ग्रेटेड रॉ मैंगो को ब्राउन गुड़, नमक और मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए। इस मिश्रण को 5-10 मिनट्स के लिए साइड में रखिए। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए, फिर उसमें राई डाले और उसे चटकने दे, मोहरी तड़तड़ू दे चांगली। फिर उसमें मेथी दाना डालिए। अब हींग का खुशबूदार स्वाद भी ऐड कीजिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए। इस तड़के को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। याद रहे कि हमें इसे गर्म यूज नहीं करना। लगभग 5 मिनट के बाद उसे कैरी के मैरिनेट किए हुए मिश्रण पर डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर गरम तड़के को तप्पू पर डाला तो वो खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रहे कि तड़का ठंडा करके ही यूज करें। एक और टिप, अगर कैरी ज्यादा खट्टी है तो आप गुड़ की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। और हमेशा वाली खास टिप, खट्टी चीजों को कांच के बर्तन में ही स्टोर कीजिए। मेटल में खट्टी चीजें स्टोर करने से मेटल की क्वालिटी खराब हो सकती है। वैसे कैरी का ये तप्पू आप 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसे रोटी पर फैलाकर रोटी का रोल बनाइए और अपनी छोटी भूख को इंस्टेंट जुगाड़ से मिटाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि कच्चे आम में कितने अच्छे गुण होते हैं? गर्मियों के सीजन में कच्चा आम खाने से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कैरी ये एक सुपर फूड है।
सही मात्रा में कैरी खाना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे कच्चे आम को नमक लगाकर खाने का मजा कुछ और ही होता है। 90s की जनरेशन को ये बात अभी तक याद होगी। भाई हमारे स्कूल के गेट के बाहर एक अंकल बेर, आंवला, इमली, हरी सौंफ और कच्चे आम के पतले टुकड़े बेचा करते थे। उन्हें खरीदने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। तब हमें ये नहीं पता था कि ये सब चीजें ही रियल सुपर फूड है। सब बच्चे तो बस एज अ टाइम पास इन चीजों को खाते रहते थे, और सिर्फ खाते नहीं थे, शेयर भी करते थे। खाना शेयर करने से बच्चों की दोस्ती एकदम पक्की होती थी। वैसे आपका फेवरेट सुपर फूड कौन सा है? इस सुपर फूड की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कैरी नाम का सुपर फूड। अभी अभी एक सुपर फूड खाया, नाम है जिसका कैरी। इसके अनोखे स्वाद ने गर्मी को बनाया बेरी। कैरी के टुकड़ों को पहले लगाओ नमक, खाकर ऐसी कैरी चेहरे पर आए चमक। कैरी को खाकर भगाओ तुम हीट, स्वाद है अनोखा जैसे पंछी की ट्वीट। आम के पेड़ पर सुर लगाती है कोयल, इसकी मीठी आवाज से मेरा मन हुआ घायल। कोयल भी जानती है कि आम है सुपर फूड। इतने गुणों से बनी है कैरी हमारी फेवरेट रॉबिन हुड। हर सीजन में आते हैं जायकेदार फल, और हमारी हेल्थ को फिट रखना यही है बीमारी का हल। देसी सुपर फूड से बढ़ाओ अपनी ताकत, अब तैयार है हम दुश्मनों की आएगी आफत। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक, आप कहीं भी मत जाइए, हम यूं गए और

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे समर वेकेशन मोड अब ऑन हो गया है और हमारे नन्हे दोस्त अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए बेकरार है। तो पेश है हमारे स्पेशल मिकी एंड मिनी माउस फ्रेंड्स के लिए एक नॉन फायर रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाना है एकदम ही आसान। एक्चुअली ये चॉकलेट के लड्डू टाइप ड्राई फ्रूट्स वाली रेसिपी है और इसे बनाकर हमारे छोटे शेफ जरूर खुश होंगे। भाई हमें भी अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के चेहरे की स्माइल देखने का इंतजार है, तो देर किस बात की। चलिए अब हम सुनते हैं किड स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चोको वॉलनट पॉप्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मारी बिस्किट्स 15 से 20, कंडेंस मिल्क 1 कटोरी, ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर या कोको पाउडर 5-6 चम्मच, रोस्टेड या पफ्ड राजगीरा 2 चम्मच, अखरोट मींस वॉलनट्स 10-12, छोटे छोटे स्ट्रॉज 6, घी 1 चम्मच। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। अब सुनते हैं इसे बनाने की रेसिपी। सबसे पहले मारी बिस्किट्स को मिक्सर में घुमाकर उसका पाउडर बनाइए। एक बड़े से बोल में मारी बिस्किट्स का चूरा और कंडेंस मिल्क को मिक्स कीजिए। इसमें कोको पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आप चम्मच यूज कीजिए। फिर इसमें वॉलनट्स के बारीक टुकड़े डालिए। आप छुरी की मदद से वॉलनट्स के टुकड़े कर सकते हैं या तो डायरेक्टली हाथ से भी कर सकते हैं। लगभग 4-5 चम्मच वॉलनट्स के टुकड़े आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगाइए, फिर तैयार मिश्रण के नींबू साइज के बॉल्स बनाइए। अब आप अपने घी वाले हाथों से उसके लड्डू बनाना शुरू कीजिए। सारे लड्डुओं को आप एक साइड में रख दीजिए। अब एक प्लेट में बचे हुए वॉलनट्स मींस अखरोट के टुकड़ों को डालिए। फिर हर लड्डू को उस वॉलनट वाली प्लेट में रोल कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, लड्डू के ऊपर वॉलनट का एक लेयर बनेगा। जब सारे लड्डू वॉलनट लेयर के बन जाएं, तब हर लड्डू में एक एक छोटा स्ट्रॉ अंदर डालिए। ऐसा करने से लड्डू को लॉलीपॉप वाला लुक मिलेगा। अब इन सारे लड्डुओं को एक सुंदर सी प्लेट में अरेंज कीजिए। इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर रोस्टेड राजगीरा को स्प्रिंकल कीजिए। इस तरह से आपके चोको वॉलनट पॉप्स अब रेडी हो गए हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए और अपनी फ्रेंडशिप को स्वीटनेस से भर दीजिए।

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो कहानियों का गुल्लक में। कहानियां जो हमारे दिल को छू लेती है, कहानियां जो कभी कभी खुशी के पल देती है तो कभी कभी गम के पल भी, कहानियां जो हमें जीने का मकसद सिखाती है और कहानियां हमें उन दिनों की याद दिलाती है जो हमने बचपन में जी होती है या फिर हमारे खुशियों के पल में या फिर बहुत सारे पल में। तो आइए दोस्तों, आज मैं सुनाता हूं आपको एक ऐसी कहानी, होटल शालीमार। होटल शालीमार कहानी है एक ऐसे कपल की जो गांव से आते हैं और बहुत ज्यादा गरीब है। विकास इस कहानी का सबसे प्रमुख किरदार और साथ ही साथ उसकी पत्नी, वो भी है इस कहानी का प्रमुख किरदार, सुमन। विकास बचपन से ही अनाथ, बूट पॉलिश करने वाला एक साधारण सा लड़का, बहुत सिंपल। दिन की आमदनी लगभग 100 रुपए और बड़ी मशक्कत के साथ उसकी शादी हो जाती है सुमन के साथ। सुमन जिसने अपनी पढ़ाई 3री-4थी कक्षा तक ही की होती है और उसके बाद बड़ी गरीबी होने के कारण अपने फैमिली के साथ वो छोटे मोटे काम में लग जाती है, कभी खेती में, कभी किसी और कबाड़ी में या कभी किसी और मजदूरी में। दिन गुजरे, साल गुजरे और फिर देखते देखते जब सुमन बड़ी हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी विकास से कर दी। अब शादी होने के बाद विकास की एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बेबी को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दे, पर उसकी आमदनी इतनी ना होने के कारण उसने सुमन से पूछा कि सुमन, मुझे आपको देने के लिए फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी कर सकूं। सुमन मुस्कुराई और उसने विकास से कहा कि मुझे कोई भी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ काफी है मेरे लिए। विकास मुस्कुराया और कहा कि मैं जानता हूं मेरा साथ काफी है तुम्हारे लिए, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं या कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर चाहिए जो तुम मुझसे मांग नहीं रही। सुमन एक पल के लिए सोचने लगी और सोचते सोचते सुमन ने विकास से कहा कि मेरी बचपन से ना एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो जो नुक्कड़ पे आप होटल देख रहे हो वहां पे जाके खाना खाना है। मैंने कई बार वहां से गुजरते समय देखा है कि जो हमारे गांव के बड़े लोग हैं वो जाते हैं वहां पे अपनी परिवार के साथ और खाना खाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, वहां पे तरह तरह के पकवान मिलते हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। मैंने कभी उस होटल को अंदर से देखा नहीं है और मैं नहीं जानती कि वहां के पकवान कैसे लगते होंगे, क्या वो जैसे हम पकवान बनाते हैं वैसे ही लगते हैं या फिर वो कुछ अलग से लगते होंगे। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं उस होटल में जाके एक बार का खाना खाऊं। तो विकास कहते हैं ठीक है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, पर इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा। सुमन की ये बातें उस दिन पूरी रात विकास के दिमाग में चलती रही। विकास इधर से उधर करवटें बदलते रहा, छत को देखता रहा और सोचता रहा कि वो कुछ भी करके, कैसे भी करके सुमन की यह ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। पर विकास के पास ज्यादा पैसे ही नहीं थे। वो दिन के 100 रुपए कमाने वाला लड़का कैसे एक बड़े से और महंगे से होटल में जाके अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करेगा। और यही कश्मकश में, यही सोच में वो पूरी रात ढल गई। फिर सवेरा हुआ और सवेरे के साथ आई एक उम्मीद की नई किरण,
उसने सोचा कि अगर मैं कम कमाता हूं तो क्या हुआ, मैं थोड़े दिन एक दो नौकरी और कर लूंगा जिससे मैं कुछ ज्यादा पैसे कमाऊं और उससे अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करूं। तो वो अपनी नई नौकरी के चक्कर में वो निकल पड़ा और उसे दो नौकरियां मिली। एक नौकरी ऐसी जो माल से भरी हुई गाड़ियां आती है गांव में, तो उसे खाली करने के लिए मजदूर की जरूरत होती है, तो वहां पर वो जाता है और उसने वहां पर वो नौकरी पाई। और नौकरी पाने के बाद वो हर रोज सुबह वहां पर जाकर माल ढोने लगा, वो जो माल से भरी हुई गाड़ियां थी उन्हें खाली करने लगा और दिन के उसे 40 रुपए मिलने लगे। उसके साथ ही साथ उसने उसके एक दोस्त संदेश उसे कहा कि अगर तू बुरा ना माने तो कुछ दिन के लिए और कुछ घंटे के लिए मुझे अपनी रिक्शा चलाने दे, तो मेरी एक जरूरत आन पड़ी है, मैं उसके लिए थोड़े पैसे जमा करना चाहता हूं, तो संदेश तू मुझे मदद करेगा क्या? संदेश और विकास बचपन के दोस्त थे, तो संदेश ने कहा कि जरूर मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, पर तू पहले मुझे ये बता कि तू रिक्शा क्यों चलाना चाहता है, जब तू एक नौकरी तो कर रही है, बूट पॉलिश करता ही है तू, उसमें तेरा पूरा टाइम जाता है और साथ ही साथ अभी तूने एक और नौकरी कर रहा है गाड़ी खाली करने की, तो फिर अभी ये तीसरा काम क्यों करना चाहता है? तो फिर विकास संदेश से पूरा मांझरा बयां करता है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी चीजें हैं और ऐसी अपनी बीवी की ख्वाहिश है जो उसे पूरी करनी है। तो इस बात में संदेश बड़े मजाकिया तौर पर उसे कहता है वारे जोरू के गुलाम और उसकी चुटकी लेता है।

पर अंदर ही अंदर संदेश को बड़ी खुशी महसूस होती है कि विकास बहुत दिनों बाद खुश दिखाई दे रहा है और वो चाहता है कि ठीक है, ये खुशी उसके जिंदगी

बस मन के हाथ में रख देता और कहता है अभी अपनी आंखें खोलो। सुमन जब अपनी आंखें खुलती है तब वो खुशी से फूला नहीं समाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, ऐसे आंसू जो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ना, खुशी के आंसू, ठीक उसी तरह खुशी के आंसू। और वो पूछने लग जाती है कि आपने इतने कम दिनों में इतने पैसे कैसे अरेंज कर लिए, कैसे कहां से लाए हो आप ये पैसे, हमें बताइए। सुमन को लगता है कि सुमन की ख्वाहिश पूरी करने में कहीं विकास ने कोई गलत काम तो नहीं कर लिया या विकास कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, तो सुमन की कश्मकश बढ़ जाती है, सुमन काफी चिंतित हो जाती है। तो विकास उससे कहता है कि आप चिंता ना करें, ये हमने बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ पैसे जोड़े हैं, पैसे जमा किए हैं, और आप मन में कोई भी संकोच ना लाइए और किसी भी प्रकार का संकोच ना लाइए। हम रोज सुबह जाते थे सामान से भरी हुई गाड़ियों को खाली करने के लिए, और रोज शाम की वो जो संदेश भाई जानते हो ना तुम, उनकी रिक्शा चलाते थे तो ऐसे ऐसे करके पैसे जमा कर लिए। और अब तुम बताओ सुमन, क्या हम तुम्हारी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते हैं? एक ही तो ख्वाहिश है वैसे तुम्हारी, अगर वो भी हम पूरी नहीं कर पाए तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो सुमन खुश हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश। और उस रात सुमन इतनी खुश रहती है कि वो पूरी रात भर सो नहीं पाती है, और जब अगला दिन आता है तो वह सुमन इसी के इंतजार में रहती है कि कैसे ये दिन कटे और अगला दिन आए। जब अगला दिन आए तो सुमन विकास के साथ जाए उस होटल में जहां से वो कब से, जिस होटल के वो सपने सजाए बैठी है न जाने कब से, एक एक मिनट मानो उसके लिए एक एक घंटा लग रहा है उसे उस अगले दिन का, और एक एक घंटा जैसे मानो एक एक साल। वो बस इसी इंतजार में है कि कैसे आज का दिन कटे, कैसे ये सूरज ढले, कैसे ये शाम ढले, कैसे ये रात ढले, अगला दिन आए, वो तैयार हो और जाए फिर। और धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो दिन ढलता ढलता ढलता ढलता जाता है, रात ढलती जाती है, फिर आखिर में वो शनिवार का दिन आता है जिस दिन वो दोनों को होटल शालीमार जाना है। सुबह विकास अपने काम पर निकल जाता है बूट पॉलिश वाले, और जब शाम में वो लौट कर आता है 5:30 बजे तो कहता है अपनी बीवी से कि चलो जी तैयार हो जाओ, जाना है हमें, आप अभी तैयार होने जाओगे तो लगभग 3 घंटे लगा लोगे। सुमन कहती है नहीं नहीं नहीं मैं अभी आई, अभी तैयार होकर आई। अब जैसे कि वो दोनों गरीब है तो उनके पास कोई ज्यादा कपड़े भी नहीं है, तो सुमन उसके शादी में मिले हुए कुछ एक दो जो नई साड़ियां उसके पास रखी होती है उसके शादी के जोड़े के अलावा वो उसे पहनती है, कानों में सोने का रंग चढ़ा हुआ बालियां पहनती है, क्योंकि उनकी उतनी हैसियत ही नहीं कि वो सोने के झुमके खरीद पाए, तो वो सोने का पानी चढ़ा हुआ झुमके पहनती है, आंखों में काजल लगाती है, सस्ती है सवरती है, और ठीक एक दुल्हन की तरह तैयार होती है, क्योंकि आज उसकी वो ख्वाहिश पूरी होने वाली थी जो वो न जाने कितने दिनों से देखते आ रही है। और हमारे जो विकास बाबू है, खैर उनके पास तो ज्यादा कपड़े होते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनकी शादी में पहना हुआ जो सफारी कोट होता है तो वो पहनते हैं। तो वो जाते हैं अपनी अलमारी खोलते हैं और उस अलमारी में से निकालते हैं अपनी शादी में पहना हुआ सफारी, और उस सफारी को पहनते हैं और बड़े इतराते हैं ऐनक के सामने खड़े होकर। आखिर में विकास बाबू

तुमने वो कर ही लिया, तुमने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी कर ही ली। आज सुमन जी तुमसे बहुत खुश होंगी। ऐसे तरह तरह के न जाने कितने 10-12 विकास उनके आजू बाजू में खड़े हो जाते हैं, जो उनके ऊपर कहते रहते हैं, ओ विकास बाबू और विकास बाबू और विकास बाबू। और विकास बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और आखिर में, अंत में सुमन और विकास एक दूसरे के सामने आते हैं। विकास सुमन को देखकर उसी तरीके से खो जाता है जिस तरीके से उसने पहली बार सुमन को देखा था। और सुमन इस चीज के लिए बेहद खुश होती है कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके पति ने न जाने कितनी मेहनत की। अब वो दोनों वहां से निकलते हैं अपने घर से और जाते हैं होटल की ओर। रिक्शा रुकाते हैं, रिक्शे में बैठते हैं। सुमन रिक्शे की दाई ओर से बाहर देखती हुई, हवाओं को छूती हुई। आज हवाओं की खुशबू थोड़ी अलग है, आज हवा में रवानगी कुछ अलग है। आज हवा मानो सुमन से बात कह रही है। आज जितने भी हवाएं सुमन से मिलके जा रही है वो सुमन को बधाई दे रही है कि जाओ, आज तुम्हारी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आज जितने भी रास्ते पर लगे हुए पेड़ हैं मानो सुमन के खुशी का इजहार कर रहे हैं। आसमान में जितने भी पंछी हैं सब खुशी के गीत गा रहे हैं और सुमन उसमें ही खोई हुई, इतनी मदहोश कि उसे ये पता भी नहीं चलता है कि कब होटल शालीमार आ जाता है। ओ सुमन जी, अब रिक्शे से नीचे उतरिएगा या फिर रिक्शे में बैठकर ही खाना खाना है आपको? विकास सुमन से कहता है। ओ अच्छा, हम आ गए। हाँ हाँ आ गए, चलिए। अब जब दोनों रिक्शे से नीचे तो उतर जाते हैं पर दोनों के दिल में एक बहुत बड़ी कश्मकश पैदा हो जाती है। और वो ये कश्मकश कि इतने बड़े होटल में जाने के लिए इनके पास पैसे तो है पर ये कभी इतने बड़े होटल में गए नहीं, और अगर ये उस होटल में गए तो जो होटल का दरबान है क्या वो इनको अंदर आने देगा? क्या वो इनको होटल के बाहर से ही भगा देगा? क्या फिर सुमन की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी? तो जानते हैं इस कहानी का अगला भाग एक ब्रेक के बाद।

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली कहानी में हमने सुना था कि सुमन और विकास, यानी विकास किस तरह अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत करता है और कैसे कैसे पैसे जमा करके अपनी बीवी को होटल शालीमार लेके जाने की उसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करता है। अब दोनों जो होटल शालीमार पर आके पहुंच गए तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनते हैं कहानी का अगला भाग। विकास और सुमन अब होटल के बाहर खड़े हैं। एक आलिशान होटल जो मुंबई में किसी JW मैरिट होटल से कम नहीं, ठीक उसी तरह दोनों बाहर खड़े। दोनों के मन में न जाने कितने अनगिनत सवाल है, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उन्हें कोई ना दे सके, वो खुद भी नहीं जानते कि इन सवालों का जवाब ढूंढे कहां से। एक जो सोशल स्टिग्मा होता है वो उन पे आ गया था, जो सोशल टाबू हो जाता है कि गरीब लोग बड़े होटल में नहीं जा सकते। हाँ, जाने शायद बचपन में उन्होंने ये सुना हो, तो इसीलिए वो जिस तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे थे उस होटल की ओर, उनके दिल में ना जाने कितने कश्मकश, कितने सवाल, कितनी बेचैनियां उमड़ रही थी अंदर। एक सैलाब उमड़ रहा था कि वो सच में जाए या ना जाए। सुमन ने विकास का हाथ थामा और कहा कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? विकास ने जवाब दिया। वो क्या है ना कि आप तो जानते ही है कि हम कितने गरीब हैं और यहाँ पे आने वाले सारे अमीर, तो क्या हमारा जाना सही होगा? लोग हमें किस नजर से देखेंगे? आप को नहीं लगता कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए घर? धीमी आवाज से सुमन ने कहा यह। भला क्यों हमें लोग बुरी नजर से देखेंगे या ऊंच नीच वाली नजर से देखेंगे? हमारे पास पैसे है भाई, और हम थोड़ी किसी का फ्री में खाना खाने आए हैं ना, हम तो पैसे लेके आए हैं, और पैसे है तो खाना खाया जा सकता है। यहां पे क्या, लंदन में भी खाना खाया जा सकता है अगर पैसे है तुम्हारे पास। बड़ी मजाकिया तौर पर विकास ने सुमन से कहा, और यही कुछ चीजें थी, यही विकास का कहा हुआ था जो सुमन के अंदर उसने हौसला पैदा किया, और दोनों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, वो जाएंगे अंदर। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कदम दोनों के बढ़ते रहे होटल की ओर, और जब होटल की दरबान के पास पहुंचे तो विकास ने अपनी जेब में से, ऊपर वाली जेब में से, शर्ट की जेब में से 50 रुपए निकालकर, जो शायद उसने पूरे दिन भर में कमाया था बूट पॉलिश करके, वो 50 रुपए जो उसने उसके ऊपर की जेब में रखे थे वो निकालकर रख दिया दरबान के हाथ में, ताकि दरबान उन दोनों को अंदर जाने से रोके नहीं। अब ये बात विकास को संदेश ने बताई थी कि अगर तुम कभी भी किसी बड़े होटल में जाते हो और शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पहनावे से या तुम्हारे रंग रूप से कोई तुम्हें बाहर निकाले, तो सबसे पहले एक चीज जरूर कर लेना कि किसी भी होटल के दरबान को कुछ पैसे उसके हाथ में रख दो, तो वो आपको कभी रोकेगा नहीं, वो आपको बड़ा आदमी समझेगा। और यही विकास ने किया, और दरबान के हाथ में 50 रुपए रख दिए। सुमन और विकास दोनों अब अंदर चले गए। अब दोनों अंदर चले गए, देख रहे हैं कि जाके कहां बैठे कहां बैठे कहां बैठे, समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेबल खाली है लेकिन उनके ऊपर एक लंबा सा
कुछ रखा है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उसी एक ऐसे बड़े से टेबल पर जिस पर कुछ लिखा हुआ है रिजर्व जैसा, वहां पर सुमन जाके बैठने की कोशिश करती है, उतने में पीछे से एक वेटर आता है, मैडम मैडम रुक जाइए, आप यहां नहीं बैठ सकते हैं, ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है। तो सुमन एक मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, किसी ने बुक किया, ये क्या होता है। तो वो वेटर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, उसने हमें पहले ही सूचना कर दी है कि वो यहाँ पे आएंगे और ये टेबल उनके लिए ही बुक है, आप एक काम कीजिए, वो वहां पे देखिए टेबल खाली है, वो किसी के लिए बुक नहीं है, आप और सर वहां पर जाके बैठिए। अब जिंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति ने विकास को और सर बोला था, तो विकास काफी खुश हुआ कि हाँ चलिए किसी ने तो हमें सर बोला। अब विकास और सुमन बैठे हैं दोनों उस टेबल पर इसी इंतजार में कि खाने में क्या मंगा है। अब वो जो बड़ा सा मेन्यू कार्ड उनके सामने रखा है वो तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या मंगा है, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं है और वो ठहरे देसी और बड़े सिंपल से बड़े भोले से लोग, तो उनको पता भी नहीं कि कैसे खाना मंगाया जाए यहाँ पे। तो वो विकास जो है एक वेटर को आवाज देता है भैया जी आइए, तो आजू बाजू वाले लोग उसे देखने लगते हैं, तो दूर दो टेबल छोड़कर खड़ा हुआ एक वेटर समझ जाता है कि ये नए नए आए हैं, इनको शायद से तौर तरीका नहीं पता या ये नहीं जानते कि वेटर कह के पुकारा जाता है। तो वो वेटर संदेश सॉरी तो वो वेटर विकास और सुमन के पास चला जाता है और कहता है कि बताइए आप खाने में क्या खाना चाहते हैं। विकास बड़ी धीमी आवाज में उस वेटर से कहता है भैया जी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और ये जो बड़ा सा ये जो कार्ड रखा है आपने, हमें पढ़ना नहीं आता तो हम नहीं जानते इसमें क्या है, पर आप अगर हमारी कुछ मदद कर दे तो हमें क्या खाना है हम आपको बता देंगे, तो उस तरीके के पकवान का आपके पास कुछ हो तो जरूर ले आइएगा। तो वेटर हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ बताइए सर आपको क्या चाहिए, मैं वो चीजें अगर हमारे पास होगी तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। विकास कहता है बताओ सुमन जी क्या खाना है आपको। सुमन जी कहती है हमें वो पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर, पालक पनीर। तो विकास वेटर को अब ऑर्डर देने लगते हैं, एक काम कीजिए आप मटर पनीर होगा आपके पास। तो वेटर कहता है हाँ, तो मटर पनीर लाए। पालक पनीर होगा आपके पास? हाँ है, तो एक पालक पनीर और रोटी लाइएगा, रोटी आठ टू रोटी लाइएगा आठ, और दाल चावल मिल जाएगा आपके पास? हाँ मिल जाएगा, हाँ तो वो लाइए। और हाँ हाँ सुनिए, ये ऑर्डर सब लाने, ये सब खाना लाने से पहले वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है शिकंजी वो दो लाइएगा, दो बड़ी वाली बॉटल में जो आती है, एक मैडम जी के लिए और एक हमारे लिए, और जब खाना पूरा खत्म हो जाएगा ना तो मैडम जी के लिए चार आइसक्रीम लाना चार। तो वो वेटर जानने लग जाता है कि ये पहली बार आए हैं और बड़ा खुश होता है वो वेटर ये देखकर कि एक पति अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से
उसकी जिद पूरी करने के लिए किस तरीके से होटल में आकर उसके लिए तरह तरह के व्यंजन को ऑर्डर दे रहा है। अब 5-10 मिनट हो जाते हैं और खाना आता नहीं है। खैर कोल्ड ड्रिंक्स तो आ जाती है, तो सुमन जी कहती है, विकास जी कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो रहा है, हमें तो लगा था कि हम जाएंगे और कहेंगे कि ये खाना लाओ और ये लेके आ जाएंगे, पर अब तो 10-15 मिनट हो गए, अब तक तो कुछ नहीं आया, ये सिर्फ शिकंजी ला के दिए, बस यही पी के जाना है हमें। तो इतने में विकास उस वेटर को दोबारा बुलाता और कहता है कि भैया जी अभी तक खाना नहीं आया। तो वेटर विकास से कहता है कि सर आप शायद पता नहीं है, पर यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर देते हो तो लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं आपका खाना आने के लिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हो तो फिर वो ऑर्डर हम लेने के बाद वो खाना पकाया जाता है फिर लाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका खाना अभी हम ला के आपको परोसते हैं। तो 15 मिनट के बाद वेटर सारा ऑर्डर लाता है, विकास और सुमन खाना खाना शुरू करते हैं। रोटी का एक एक निवाला जैसे मानो एक एक तारे विकास ने तोड़ कर लाए और सुमन के हाथ में दिए, जैसे किसी भी प्रेमिका को प्रेमी एक एक तारा तोड़कर लाके देता है और उसके हाथ में रखता है और प्रेमिका कितनी खुश होती होगी वो एक एक तारे को देखकर, ठीक उसी तरह रोटी का एक एक निवाला सुमन को वही याद दिला रहा था कि मानो विकास ने आसमान से न जाने कितने तारे तोड़कर लाए हैं और आज उसके कदमों में बिछा दिए, आसमान का पूरा चांद उसके कदमों में बिछा दिया उसकी वो एक ख्वाहिश पूरी करकर। अब खाना खत्म हो गया, खाना खत्म होने के बाद आइसक्रीम आई, अब आइसक्रीम भी खत्म हो गई, अब आइसक्रीम खत्म होने के बाद दोनों ने चाहा कि हाथ धो रहे हैं अभी, तो उतने में वेटर ने गर्म पानी से भरा हुआ बाउल उनके सामने लाके रखा और एक प्लेट में 8-9 पीसेस ऑफ लेमन्स लाके रखे। अब उनको क्या लगा वो लेमन उस बाउल में निचोड़ना है और पी लेना है, तो उसने कहा कि वेटर से विकास ने कि भैया हमने तो ये नींबू पानी ऑर्डर नहीं किया था, आपने क्यों लाया? तो वेटर हंसने लगा, बोला ये नींबू पानी नहीं है, ये जो आप कटोरा देख रहे हैं ये गर्म पानी का कटोरा है, इसमें आप अपने हाथ धोइए, हाथ धोने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, और आपके उंगलियों पर जो चिपचिपापन है तो ये आप नींबू अगर इस पे मसलेंगे तो ये चिपचिपापन आपका चले जाएगा, और वो हाथ में धोते रहिए, हाथ धोते रहिए उस कटोरे में। तो ये पहली बार हो रहा था विकास और सुमन के साथ, तो ये काफी अद्भुत अनुभव था उनके लिए, और वो बहुत ज्यादा एकदम एक बच्चे की तरह एक्साइटेड थे कि देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, हमको कहीं जाना नहीं है और हमारे हाथ धोने के लिए यहाँ पे कटोरा भी लाया जा रहा है जिसमें हम हाथ धो रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, ये बहुत एक अलग अनुभव था उनके लिए। तो अब हाथ धो लिया, खाना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, और उसके बाद बारी आई बिल देने की। तो बिल देने के लिए विकास ने कहा वेटर से कि हमें बता दीजिए कितना पैसा हुआ है तो हम दे दे और जाएं यहां से। तो वेटर चले जाता है और बिल लेके आता है, और बिल लेके आता है तो लगभग 1800 रुपए बिल हुआ होता है, और विकास के पास तो 2250 रुपए है, तो वो तो खुश हो जाता है कि चलो 450 रुपए मेरे पास बच ही गया। अब वो बिल देखता है और अपनी जेब में सीधे साइड वाले पैंट की जेब में जब वो हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, तो वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो पूरा आर पार चला गया, यानी जो पैंट विकास ने पहनी है वो फटी हुई है। अब विकास बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है,
वो अपने दूसरे जेब में हाथ डालता है, वहां पे उसे पैसे नहीं मिलते। वो पैंट के पीछे वाले जेब में हाथ डालता है, वहां उसे पैसे नहीं मिलते। वो धीरे से सुमन से कहता है कि सुमन जी, हमने आपको पैसे दिए क्या रखने? सुमन जी कहती है, नहीं, आपने हमें तो पैसे नहीं दिए, आपने आपके पैंट के जेब में रखे थे ना निकलते समय। तो बीवी को कोई चिंता ना हो इस कारण विकास जोर से हंसता है, हाँ हाँ हाँ, मेरे ही जेब में, मैं तो देख रहा था कि कहीं तुम परेशान तो नहीं होती अगर मैं ऐसे कहूँ तो। और अंदर विकास बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम दो मिनट रुको, हम आ रहे हैं। ये कहकर विकास बाहर जाता है और देखता है कहीं वो पैसे रिक्शा से उतरते समय उसने गिराए तो नहीं या वहां गिर तो नहीं गए। तो वहां पे जाके पूरा देख के आता है पर उसे वो पैसे मिलते नहीं है। वो जहां जहां से चल के आया ठीक उसी तरीके से वहां पे फिर से दोबारा चलकर जाता है, देखता है कि पैसे उसे मिल जाए पर वो पैसे उसे मिलते नहीं। और वो परेशान होकर 10 मिनट बाद जब फिर से दोबारा होटल में आता है तो वेटर भैया को दोबारा आवाज लगाता है कि हमारे पास पैसे थे पर हम नहीं जानते कि ये बिल भरने के लिए जो हम आपको पैसे देने वाले थे ये कहाँ गिर गए। हम घर से लेके निकले थे पैसे, पैसे हमारे पास मौजूद थे पर जब हमने ये आपको पैसे भरने के लिए जेब में हाथ डाला तो हमारी पतलून की जेब फटी निकली। विकास वेटर से कहता है, वेटर कहता है कि देखो हम जानते हैं ये तुम्हारे हथकंडे हैं, पहले तो एकदम अच्छा अच्छा खाना खा लो और बाद में बोल दो पैसे नहीं है और कहीं से यहां से बच के निकल जाओ। हम ठीक से जानते हैं तुम गरीबों की ये सारी हरकतें, तो चुपचाप से अपना बिल भरो और जाओ यहां से, निकलो यहां से। वेटर कहता है, नहीं नहीं वेटर भैया, सच में हमारे पास पैसे थे, 2250 रुपए थे, हमने मेहनत से कमाए थे, हमने दो दो जगह काम करके ये पैसे कमाए थे, हमारे सुमन के लिए कमाए थे, ये पैसे थे हमारे पास, हम झूठ नहीं कह रहे, हम घर से लेके निकले थे तो पैसा लेकर निकले थे, हमने अपनी जेब में ही रखा था ये पैसा पर हम नहीं जानते थे कि पतलून हमारी फटी हुई है, पैसे कहीं गिर गए हैं। आप हमारी बात का भरोसा कीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन आप हमारी बातों को समझिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। विकास गिड़गिड़ाकर रोकर विनती करता है उस वेटर से कि वो उसकी बात मान जाए और किसी तरीके से सुमन और विकास को घर जाने के लिए दे दे। वेटर नहीं मानता, वेटर कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हें अब यहां पे काम करना पड़ेगा, यहां नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें अब यहां बर्तन मानने पड़ेंगे, खाना खाते समय तुम्हें नहीं सूझेगा कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अब ये सब तुम्हें सूझेगा जब तुम बर्तन मांजोगे, जब 15 दिन बर्तन मांजोगे तब जाके ये जो तुम्हारा बिल हुआ ये पूरा होगा। तो चलो उठो उठो उठो, चलो बर्तन मानने चलो। ये कहकर वेटर विकास को अभी चेयर पर से उठाने लगता है। ये सारा मांजा देखकर सुमन बहुत रोने लगती है और वो खुद को दोष देने लगती है कि ये उसी की ख्वाहिश थी जो आज उसके पति की बेइज्जती हो रही है। अगर वो अपनी ख्वाहिश नहीं बताती तो शायद ये दिन कभी आता नहीं और विकास कभी उसे वहां लेकर नहीं जाता, ये सब मामला नहीं होता और विकास की इतनी बेइज्जती नहीं होती। सुमन इसी चक्कर में रोने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है। उतने में विकास उससे कहता है कि सुमन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, हम काम करके आ रहे हैं, किए है ना इसके पहले भी काम, कर लेंगे थोड़ा और काम, और आपके लिए ही तो कर सकते हैं ना काम, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हो, धर्मपत्नी हो,
अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम बस ये काम खत्म करके आ ही रहे घर, आप जाइए। ये कहकर विकास सुमन को होटल के बाहर जाने पर मजबूर तो कर देता है, पर सुमन जाती नहीं है, वो होटल के बाहर ही विकास का इंतजार करती है। विकास अपने मायूस चेहरे को लेकर उस वेटर के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे किचन की ओर कदम बढ़ाता है, जहां पे पूरा बर्तन धोने का एक अलग सा डिपार्टमेंट है। वहां जाता है, देखता है तो न जाने सैकड़ों थालियां पड़ी हुई, बड़े बड़े पतीले पड़े हुए हैं, न जाने कितना सामान जो धोने के लिए पड़ा हुआ है। और वो जो वेटर होता है वो कहता है कि आज तुम्हें इतना पूरा बर्तन धोना है और रोज आके यही काम करना है आने वाले 15 दिनों तक, तब जाके तुम्हारा बिल पूरा होगा। विकास गरीब क्यों ना हो पर एक खुददार आदमी था। वो जानता था कि अगर उसने खाना खाया है और अभी उसके पास पैसे नहीं है बिल चुकाने के लिए तो वो ये काम जरूर करेगा। तो विकास अपना शर्ट उतारता, अपनी पैंट उतारता और एक लंबा सा रखा हुआ कपड़ा पहनता है ताकि उसके जो शादी के कपड़े सफारी वो गंदा ना हो। और वो कपड़ा लपेट कर एक लुंगी जो रखी हुई होती है वहां पर वो लपेट लेता है और सोचता है वही लपेट कर वो काम करेगा। अब वो लुंगी लपेट लेता है और बड़ा सा पतीला को खींचते हुए अपने पास लेके आता है, ब्रश उठाता है, उस पर थोड़ी सी टिकिया लगाता है और पतीले में जैसे हाथ मांझने जाता है, वो पतीले को मांझने जाता है, उसकी नजर उठती है, जाती है अपने पैंट पर और पैंट की जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पे तुरपाई की होती है पैंट को, वो हिस्सा फटा हुआ होता है, लगभग 2 से 3 इंच, और उस फटे हुए हिस्से में वो पैसे जाकर अटक जाता है जो विकास ने अपने सीधे साइड के पतलून में जो फटी हुई जेब है वहां पे जब वो डालते तो वो पैसे कहीं गिरते नहीं है, उसी की ही पतलून के जो नीचे वाले हिस्से में जाके अटक जाता है। और तब विकास को याद आता है कि ये जो शरारत है ये और किसी की नहीं, उस अलमारी में घूमते फिरते हुए उसके घर में टहलते हुए चूहों की है। ये चूहे ही थे जिन्होंने उसका जेब कतर दिया और ये चूहे ही थे जिन्होंने वो तुरपाई को काट दिया था और उस तुरपाई में वो पैसे जा अटके थे। तो विकास जब वो पैसे देखता है तो इतना ज्यादा खुश होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है जैसे मानो उसने आसमान पा लिया हो, जैसे मानो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जैसे मानो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। इतना जोर से चीखता है और जाकर सीधे वो पैसे लेता है। वो पैसे अब वो पैंट में नहीं डालकर अपनी शेरवानी के ऊपर वाले हिस्से में रखता है, शेरवानी पहनता है और आता है वेटर के पास और उससे कहता है, भैया जी हम आपसे कह रहे थे ना कि पैसे थे हमारे पास और पैसे है हमारे पास, ये देखिए ये पैसे जो है हमारे तुरपाई में अटके हुए थे पैंट के नीचे वाले हिस्से में, शायद वो चूहों ने कतर दिया था और हमारी जेब भी, हम झूठ नहीं कह रहे थे आपसे, अभी ये आपका पैसा लीजिए खाने का और हमें जाने दीजिए, हमारी सुमन हमारा बाहर इंतजार कर रही है, न जाने कितनी रो रही होगी वो। और ठीक इसी तरह विकास वो बिल पे करके जब बाहर आता है तो सुमन रोती हुई उस होटल के बाहर जो एक छोटा सा मंदिर है वहां पे रोती हुई ये प्रार्थना में लगी हुई है कि बस जल्द से जल्द उसका पति विकास बाहर आ जाए। और विकास जब बाहर आता है तो विकास उससे वो पूरा वाकया बयान करता है कि कैसे कैसे उससे वो पैसे फिर मिले और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बचे हुए 450 रुपए जो होते हैं उसके पास वो पैसे विकास सुमन के हाथों में देता है और कहता है कि लक्ष्मी को लक्ष्मी के पास ही होना चाहिए,
मेरे पास आप वही काफी है, आप ही लक्ष्मी को अपने पास ही रखें। और दोनों खुश होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानियां हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी सीख देती है कि जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो। जैसे कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, और हम बस यही कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी खत्म हो जाए। और अचानक से एक ऐसा रास्ता खुलता है कि शायद हमने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की होती, और वहां से हमारी उस परेशानी का हल आता है। वो कहते हैं ना, जब भगवान एक दरवाजे बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता है। ठीक उसी तरीके से हुआ विकास और सुमन की कहानी में, जहां उन्हें लगा कि सारे दरवाजे बंद है, अब कोई ये परेशानी खत्म ही नहीं होगी, ये परेशानी टल ही नहीं सकती, ये परेशानी का कोई हल ही नहीं है। और अचानक से एक ऐसा हल आया इस कहानी में कि जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, जिसकी कल्पना ना शायद सुमन ने की, ना विकास ने की, ना वेटर ने की, ना किसी ने की, पर भगवान जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी नियति, आपके अच्छे काम, आपकी मेहनत आपको उस मुकाम पर ला खड़ा करती है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो एक पल में हल हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये कहानी को सुनने के लिए। मैं फिर से लौटूंगा दोबारा एक नई कहानी लेकर। तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में घर कर जाए।

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।